FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM एंड 7.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। इस समाचारों को सुनने के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का

0: कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अपने ये प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं संवेद स्वर में गई इस मातृवंदना।

संवित स्वर में अभी आपने सुना ये देशगान, और अब लीजिए प्रस्तुत है जुथिका रॉय के स्वर में मीराबाई की ये भक्ति रचना।

अभी आपने सुना हेमंत आचार्य को इस पारंपरिक भक्ति रचना के लिए, और अब लीजिए सुनिए अनूप जलोटा को रचना पारंपरिक।

0: पंडित मिलिंद चित्तल के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का हमारा चिंतन कार्यक्रम केंद्रित है सेवा पर। चिंतक हैं डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार।
1: संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य, अर्थात प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करना मानव का परम धर्म है। सेवा कर्म को धर्म समझकर अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर करना ही मनुष्य मात्र का धार्मिक अनुष्ठान कहा गया है, जिसकी गहराई को बड़े बड़े योगी भी नहीं जान सके हैं। धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ हम भूल चुके हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की उस प्रमुख विशेषता को धर्म कहा गया है जिस गुण के न होने से उस वस्तु का अथवा व्यक्ति का अस्तित्व और स्वरूप ही समाप्त हो जाए। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, जिसके न होने से अग्नि का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। कहा गया है, धारणात् धर्म इत्युच्यते तथा धार्यते अनेन इति धर्मः। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सेवा कर्म को अपना परम धर्म मानकर अपनाया। गांधी जी ने अपने जीवन के लगभग 14 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों पर अंग्रेज शासकों द्वारा किए जा रहे अन्यायों तथा अत्याचारों का अहिंसात्मक विरोध किया। गांधी जी बैरिस्टर थे, अतः न्यायालयों में भारतीयों पर गोरे अंग्रेजों द्वारा लादे गए अन्यायपूर्ण मुकदमों से कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ अंग्रेजी शासन से अहिंसात्मक असहयोग भी करते रहे। इसके लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा गांधी जी को भरपूर सहयोग मिलता रहा। अपनी सत्यनिष्ठा, अहिंसा और असहयोग आंदोलनों के चलते गांधी जी गोरे शासकों की आँख की किरकिरी बन गए थे। सत्य, अहिंसा, सेवा आदि मौलिक मानवीय गुणों के प्रशिक्षण के लिए गांधी जी ने वहाँ फिनिक्स नामक स्थान पर आश्रम की स्थापना की थी। ठीक इसी उद्देश्य से जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की भी सन 1910 में स्थापना की थी, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष अलग अलग कुटियाओं में रहते हुए अपना भोजन बनाने से लेकर शौचालय सफाई तक का सारा काम स्वयं करते थे। दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए सत्यनिष्ठा और अहिंसा का प्रथम पाठ यहीं सिखाया गया था। वास्तव में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म ही थे प्रारंभिक प्रयोगशालाएं थी जिनमें गांधीवाद के नाम से सेवा, सत्य और अहिंसा आदि मानवीय गुणों के साथ अनासक्त कर्ममूलक जीवन प्रणाली को कसौटी पर कसकर संसार ने गांधी जी को समझा था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गांधी जी ने विलायत में रहते हुए मानवता की सेवा करने के अपने महाव्रत को शिथिल नहीं होने दिया। वे अंग्रेजी शासन की रीति नीति का अहिंसात्मक विरोध करते थे, किंतु अंग्रेजों से नहीं। गांधी जी ने प्रथम विश्वयुद्ध में आहत व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा के लिए वहाँ भारतीय स्वयंसेवकों की टोली बनाकर सेवा का अद्वितीय तथा प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। आगे चलकर सन 1915 में भारत आकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और वर्धा के निकट सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। आश्रम वासियों को सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, सेवा धर्म, अस्पृश्यता का विरोध आदि तथा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अनिवार्य आदर्शों का प्रशिक्षण दिया एवं उन्होंने अपने स्वयं आचरण के द्वारा रचनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए। यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों की सेवा वह स्वयं उनके बीच रहकर करते थे। वर्तमान स्वतंत्र भारत में सेवा धर्म का यह आदर्श हम भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हमारा आज का चिंतन कार्यक्रम केंद्रित था सेवा पर। चिंतक थे डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर भूपिंदर सिंह का।

राजा दशरथ के आंगन में शिशु रूप श्री राम की क्रीड़ा देखते हुए काकभुशुंडी पर माया का प्रभाव होता है। कौतूहल जनित भ्रम से काकभुशुंडी को आश्चर्यचकित देख श्री राम मुस्कुराए। हाथों और घुटनों के बल चलते हुए वे कौवे को पकड़ने दौड़े। कौवा उड़कर भाग चला। मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा उनके ठीक पीछे, मानो अभी उसे पकड़ लेगी। काक भुशुंडी आकाश में जिधर उड़ते, भुजा उनके ठीक पीछे। उड़ते उड़ते काक भुशुंडी ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी भुजा ठीक पीछे उतने ही पास। सातों आसमान पार कर काक भुशुंडी जहां भी गए, पीछे मुड़कर देखा तो वही परिदृश्य। और तब भयभीत होकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंखें खुली तो फिर अपने को अयोध्या में पाया। श्री राम ठठाकर हंस पड़े। उनके मुंह खोलते ही काकभुशुंडी बरबस उसमें प्रविष्ट हो गए। पेट में जो पहुंचे तो वहां अनेक ब्रह्मांड परिलक्षित।

0: श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण अभी किया गया। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह का था। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामायिक। इसमें आज सुनिए ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल में सामायिक कार्य। जानकारी आपको दे रहे हैं श्री एसएस चौधरी।
1: भाइयों नमस्कार। इसमें आपने ग्रीष्मकालीन मूंग लगा रखी होगी और निश्चित तौर पर अच्छी ही फसल होना चाहिए, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ से शिकायत आई है कि हमारी खेत की मूंग में इल्ली आना शुरू हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने खलिहान में रखी फसलों को जल्दी गहाई कर लें, गहाई करके 1-2 दिन सुखा करके उनको भंडारण कर लें। उसके बाद अब रही बात आपकी मूंग की और ग्वार की, तो लगभग तापक्रम 42 के आसपास हो गया है, तो अब आपको हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक निंदाई का सवाल है, तो निंदाई आप जो लाइनें हैं दो लाइनों के बीच में हो के द्वारा आप हो चलाकर निंदाई कर सकते हैं, या श्रमिक लगा करके आप निंदाई करा सकते हैं खुरपी के द्वारा। इस अवस्था में अब खरपतवार नाशी दवा डालना संभव नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यदि खरपतवार नाशी दवा डालेंगे तो हमारा जो फूल आने की अवस्था है और फलियां बनने की वो प्रभावित होंगी, इसलिए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, जो छोटी इल्ली जो दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो पत्तियों का रस चूसती है, और यहाँ तक कि इल्ली के अलावा माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जेसेड है, ये भी थोड़ी मात्रा में कीट दिखाई देते हैं। खरीफ की तुलना में ग्रीष्मकाल में बहुत कम, ना के बराबर कीड़े लगते हैं, लेकिन इल्ली की जानकारी प्राप्त हुई है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा, अगर ये उपलब्ध ना हो पाए तो डाई मिथोएट 30 EC 800 मिलीलीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये जो इल्लियां हैं उनका कंट्रोल हो जाएगा। एक फली बीटर और फली छेदक, जो हमारी मूंग की फलियां बनती हैं उनमें इल्ली छेद करके फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो इस प्रकार की इल्लियों की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास नाम की दवा आती है, ट्राइजोफास 40 EC दवा, इसको क्या करना है, 900 ml दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग पर, खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें, और इस तरह से आपका जो किसी भी प्रकार की इल्लियां हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। हालांकि ग्रीष्मकाल में मूंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, लेकिन यदि आपको लगे कि पीला मोजेक कहीं दिखाई दे रहा हो, तो इसके लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा आती है, इसको 1 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर से 1-2 बार छिड़काव करने से ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है, और अगर सफेद मक्खी नष्ट हो जाएगी तो पीला मोजेक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगर आपको रोगी पौधे मिले ज्यादा, तो उखाड़ करके आप जमीन में दबा सकते हैं, इस तरह से भी हम अपना पीला मोजेक से नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्वार का सवाल है, कुछ किसान भाइयों ने ग्रीष्मकाल में भी कुछ किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगाई है, तो किसान भाइयों तापक्रम की बात मैंने बता दी कि लगभग 42 के आसपास हो गया, इसलिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। ग्वार गहरी जड़ों वाली फसल है, इसलिए इसे हर हफ्ते पानी देना आवश्यक है, और इसको पानी की ग्रीष्मकाल में ज्यादा आवश्यकता होती है, और फूल आने पर तो पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसको सिंचाई का ध्यान रखें। खरपतवारों की जहाँ तक सवाल है, पौधे बड़े बड़े होने की अवस्था में हैं, अगर आप खेत में आसानी से चल सकते हैं तो हो के द्वारा ही आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, हालांकि छाया अगर ज्यादा हो गई हो तो खरपतवार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जहां तक कीट नियंत्रण का सवाल है, इसमें माहू और सफेद मक्खी और पत्ती छेदक कीट जो होते हैं ये बहुत प्रभावित करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए 0.5% मेलाथियन 50 EC दवा या 0.07% इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव करें। अगर किसी प्रकार की जैसे बीमारी रहती है, पर्णांग वाली बीमारी से बचने के लिए, पहले तो बीजों को हमको, यानी आप चाहें तो 100 ppm स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचारित करके बोना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि पत्तियों पर आ गया है तो ट्रेप्टोमाइक्लिन 150 ppm यानी 0.2% ब्लीटॉक्स के मिश्रण का छिड़काव करें, तो इस तरह की जो चूर्णी आस्था वगैरह भी है वो भी खत्म हो जाएगी, और सिंचाई का ध्यान रखें।
0: कृषि सामायिकी में अभी आपने सुना ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल में समसामायिक कार्य। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ये कार्यक्रम विवरण, यानी हमारी केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को जानने का। आपको बता दें, अब से बस थोड़ी सी देर बाद यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा सुनी जा सकती है प्रातः 7:05 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7:20 पर। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आप रोजाना सुना करते हैं प्रातः 7:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत 8:30 पर, फिर 9:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग सुबह 9:00 हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज के कलाकार होंगे मुन्नालाल शर्मा और मंजू शर्मा। इन्हीं के गाए कुछ लोक गीत हम आपकी सेवा में लेकर आएंगे। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10:00 अनुप्रसारित की जाएगी। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे जानी बाबू। समय रहेगा 10:05। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुना जा सकता है सुबह 10:30 पर। सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के।

हमारी दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आज दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम में आकाशवाणी केंद्र इंदौर की प्रस्तुति रहेगी। इसी प्रकार लोक संगीत और सुगम संगीत भी आकाशवाणी केंद्र इंदौर की प्रस्तुति रहेगी। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी से। इसमें आज युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र इंदौर के द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। संध्या 5:33 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में संध्या 7:21 पर ग्रामीण भाई बहनों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चाएं शामिल रहेंगी, जल स्रोतों का प्रदूषित होने से बचाएं, और दूसरी चर्चा रहेगी बीमारियों से बचाव हेतु स्वच्छ खान पान का ध्यान रखें। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी होगा। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी चर्चा रहेगी फसल चक्र क्यों और कैसे। इसके साथ ही आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित किसान वाणी गांव क्रम में एक भेंट वार्ता। इसमें आप सुनेंगे ग्राम अमतला विकास खंड पोहरी एवं जिला शिवपुरी के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। प्रस्तुति सहयोग श्री मोहन सिंह यादव का रहेगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। एक लोकगीत भी आपको सुनवाया जाएगा और मौसम की जानकारी भी इसमें शामिल रहेगी। आज रात्रि 8:00 सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता।

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशद् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, HD कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवास काले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतरराष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदंतरम् नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा। श्रोताओं, पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वह बाहरी आवरण जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो बाहरी ऐसे अवांछनीय कारकों से हमारी रक्षा करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और ये मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ऐसा तब होता है जबकि पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी प्रदूषित पर्यावरण हानिकारक होता है। इसलिए पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए हम सबकी भागीदारी जरूरी है, क्योंकि ये हम सभी का कर्तव्य है और ये सभी के द्वारा किए जाने वाला कार्य है जिसमें हमें सफलता मिलना संभव है। क्योंकि मानवीय गतिविधियों के कारण अथवा प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाले खतरनाक पदार्थों के कारक जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है और यह वायु, जल और मृदा को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण का प्रदूषित करने वाले मुख्य स्रोत हैं वाहनों से निकलने वाला धुआं, विद्युत संयंत्र, कचरा जलाना, रासायनिक कंपनियां व ज्वालामुखी विस्फोटक हैं। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कई विषाक्त गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल होकर वातावरण को विषाक्त बना देती हैं। जब मानव द्वारा श्वास ली जाती है तब ये प्रदूषण मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फलस्वरूप श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय रोग, प्रजनन संबंधी रोग आदि स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार जल में अवांछित तत्वों का समावेश हो जाता है तब जल प्रदूषित हो जाता है। यह प्रदूषित जल जब पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है तब यह पेट संबंधी कई बीमारियों का कारण बनता है। इससे अपच, कब्ज, एसिडिटी, इस प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पर्यावरण को खतरे से और या इससे प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने अपने स्तर से अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण करने का सबसे बेहतर स्रोत हैं। अतः वृक्षों यानी हरितिमा को बचाए रखना, नई पौधरोपण करना हमारा हम सभी का फर्ज है। ये हम सभी का कर्तव्य है क्योंकि इसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो और ये जो कार्य है वो भी एक समूह द्वारा होना चाहिए, किसी एक अकेले की ये कर्तव्य नहीं है और ना किसी एक के करने से कुछ होगा। ये हम सभी के आपस में एक होने और एक होकर कार्य करने से इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो अनुकूल मौसम में वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए, इससे हम व हमारा पर्यावरण लाभान्वित अवश्य होगा। तो संरक्षण करना होगा हमें वन का और वृक्षों का, क्योंकि यही है तो इससे हमारा अस्तित्व है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। और क्योंकि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, इनसे मिले वायु प्राण ये हैं जीवन का आधार। तो अब ऐसी ही कुछ शुभ मंगल कामनाओं और आशाओं और उम्मीदों के साथ विराम आज की इस चर्चा से। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की 2 विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ. नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर 1 स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23

मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। प्रातः है कि 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को। गीतानंद बख्शी का है संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है और इसे हमने लिया है फिल्म आपके साथ से। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को इस गीत के लिए।

ये थी लता मंगेशकर। आपके साथ इस फिल्म के लिए गीत इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। इस गीत के लिए गीत आनंद बख्शी के था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया था। अखियों के झरोखों से इस फिल्म में अभी जी सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह।

अखियों के झरोखों से। इस फिल्म में अभी आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म कारवा के इस गीत के लिए। गीत को लिखा है मजबूर साहब ने और धुन तैयार की है आर डी वर्मन।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म कारवां के इस गीत के लिए। कार्यक्रम फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को, आनंद बख्शी का गीत है, राहुल देव बर्मन का संगीत, इसे हमने लिया है फिल्म द ट्रेन से। लीजिए सुनिए।

ये थे मोहम्मद रफ़ी फिल्म द ट्रेन के इस गीत के लिए, और अब लीजिए सुनिए शैलेंद्र सिंह को फिल्म तराना के इस गीत के लिए। तिलक राज थापर का गीत है, संगीत राम लक्ष्मण की जोड़ी ने दिया है।

शैलेंद्र सिंह के गाये फिल्म तराना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र परवीन खान का हार्दिक अभिवादन। श्रोताओं, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। बात करन की रेत में है अंतर अधिकार, एक वचन से रिस बड़े एक ते जाए। जी हाँ श्रोताओं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बातचीत की, बोलने के अंदाज और तरीके की। वाणी का अपना एक अलग महत्व होता है, इससे मनुष्य की पहचान होती है। वाणी से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। वाणी की मधुरता, शालीनता व लहजा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताती है और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार किसी भी वाद्य यंत्र की पहचान उसके स्वर से हो जाती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी और लहजे से होती है। वाणी ही तो है जो रिश्तों की मधुरता को संजोए रखती है। मृदु वाणी जहाँ दिलों को जोड़ती है, वहीं कर्कश वाणी हृदय को तोड़ भी सकती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बोलना न केवल एक कला है, वरन इसका मूल्य असीम है। ये हमारे व्यक्ति

जज्ब का परिचय देती है। शिक्षा के साथ साथ बोलने का अंदाज और तरीका जितना अच्छा होगा और उतना ही बेहतर प्रदर्शन वक्ता कर सकता है। बोलते समय शब्द चयन का बड़ा महत्व होता है। शब्दों की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि तरंगों के माध्यम से शब्द गुंजित होकर वातावरण को प्रभावित करते हैं। अतः शब्दों में ज्ञान, सत्य, शालीनता, मधुरता और अंदाज के साथ साथ प्रभावशीलता भी होनी चाहिए। बोलते समय प्रयोग किए जाने वाले शब्द व लहजे से हृदय व कर्म का प्रतिबिंब झलकता है। इसकी पवित्रता, पावनता और सत्यवादिता से हमारे वचनों में श्रेष्ठता व विनम्रता आती है, जो वाणी का श्रृंगार होती है। और श्रृंगार किसी का भी हो, सौंदर्य में वृद्धि अवश्य ही करता है। अतः परमेश्वर द्वारा प्रदान किया वाणी रूपी वरदान सहेज कर रखना चाहिए। मधुर वचनों का उपयोग हमेशा करें। दिलों को जीतने और उन पर राज करने की एक कला मधुर व सुकोमल वचन है। इसलिए संत कवि कविदास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपा शीतल होए। और इस समय शीतलता की तो हर किसी को आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, गर्मी हो रही है, इसलिए हम सभी को तलाश होती है शीतलता की। आगामी 27 मई को मनाया जाने वाला ईद उल जुहा का पर्व अब 28 मई 2026 को मनाया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब 27 मई को सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे, वहीं 28 मई 2026 का अवकाश सुनिश्चित किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा अग्निवीर वर्ष 2026-2027 के अंतर्गत पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE के तिथि घोषित की जा चुकी है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा आगामी 1 जून से 12 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। और श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं कौशल विकास व रोजगार विभाग के निर्देशन में युवा संगम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन आगामी 28 मई 2026 को किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शासकीय आईटीआई झांसी रोड पर इस रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में होने वाले इस मेला में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, अप्रेंटिसशिप के अवसर देना है। इस रोजगार मेला में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इसमें कक्षा पांचवी से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही आईटीआई डिप्लोमाधारी भी होना चाहिए। इस हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 48 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आज मेंटेनेंस कार्य के चलते डाक बंगला उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बाधित रहेगा। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक विद्युत प्रवाह प्रभावित रहेगा और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं माधवनगर, गणेश कॉलोनी, नवाब साहब रोड, वर्मा कॉलोनी, टोंगरा रोड, आईटीबीपी गेट के सामने, राइन मार्केट एवं राघवेंद्र नगर सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। और अब रुख करते हैं मौसम का। कल से नौतपा शुरू होने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शिवपुरी में भी निरंतर तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र भोपाल द्वारा आगामी नौतपा के दिनों में शिवपुरी जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी

जारी किया गया है। बात करें आज के तापमान की, तो आज दिन का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि नौतपा के 9 दिनों में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंच सकता है। तेज धूप, लू और हाई टेम्परेचर से अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या का कारक होते हैं। इससे थकान, डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहता है। ऐसे में ज़रूरत होती है खान पान की, तो खान पान में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें छोटे मोटे बदलाव बेहद ज़रूरी हैं। ठंडा अपने शरीर को बनाए रखने के लिए फल, कोल्ड ड्रिंक्स, जो हमारी पारंपरिक कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो, जैसे ठंडे पेय पदार्थ, बादाम आदि का शरबत आदि, कैरी का पना, इस सब का हमें पे करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि दिन भर एनर्जी बने रहने में ये सभी चीज़ें मदद करती हैं। तो ऐसे में अपने खान पान का, अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के बुज़ुर्गों और बच्चों का भी की सेहत का विशेष ख्याल रखना हम सभी का कर्तव्य है। तो ये सभी चीज़ें इन दिनों, जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है, ऐसे में हमें ख्याल रखना है अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का। तो सचेत रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कुछ ऐसी उम्मीदों और आशाओं के साथ विराम कर देते हैं कार्यक्रम से विदा लेने का। कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से विदा दीजिए अपनी रेडियो मित्र परवीन को। श्रोताओं, नमस्कार।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी प्रसारित किया जा रहा था सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। एफएम बैंड 7.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो

0: ही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
5: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश

0: देश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आप ही की फरमाइश पर कुछ फिल्म गीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म कूली से। आवाजें हैं शब्बीर कुमार और साथियों के। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। अब्दुल कलाम कॉलोनी शिवपुरी से फरजाना खान, इरशाद खान, सोनू, छोटू, स्वैब, परी और साजिया ने। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म कुली का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और साथियों को फिल्म कूली के इस गीत के लिए। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म कामचोर के इस गीत के लिए। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन ने दिया है। और इस गीत को सुनने के फरमाइश हमें लिख लीजिए हमारे इन सभी साथियों ने। गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर शिवपुरी से मनोज नामदेव, मंजी नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, छोटू, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता और समस्त नामदेव परिवार ने। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म कामचोर का ये गीत।

0: अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म कामचोर के इस तो गाने के लिए कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के पश्चात।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
2: जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, इसमें अभी आप सुन रहे हैं अपनी ही फरमाइश पर कुछ गाने। फिल्मी गीतों के इस क्रम में अब डीजे आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर ग्राम पेपर समा शिवपुरी से वीरेंद्र सिंह धाकर, धर्मेंद्र सिंह यादव, जितेंद्र, सुनील वमार, रिंकू धाकर, सोनू कल्याण और इनके बहुत से साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है आप आए बहार आई, इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी फरमाइश पर आप आए बहार आई, इस फिल्म का ये गीत।

ये बहार आई। इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों को, अगर तुम ना होते। इस फिल्म का ये शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है, गुलशन बाबरा ने गीत को लिखा है, राहुल दा ने धुन तैयार की है और सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, बाबू रेयांश ठाकुर और इनका पूरा परिवार। लीजिए आप सभी सुनिए, अगर तुम ना होते। इस फिल्म में किशोर

अगर तुम ना होते इस फिल्म में, अभी आपने सुना ये टाइटल सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब लीजिए सुनिए फिल्म कुदरत में लता मंगेशकर को। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सब आशा, मुस्कान, शोभित, नीलम, प्रियांशी, बंटी, पंकज और इनके बहुत से साथियों ने ये पत्र हमें लिखा है, ग्राम दावरदेही पोस्ट सनोरा तहसील करैरा से। इस लीजिए।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म कुदरत के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 7.2 मेगाहर्ट्ज़ का आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मुन्ना लाल शर्मा और मंजू शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। लीजिए पहले सुनिए मुन्ना लाल शर्मा से ये

0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अब लीजिए सुनिए ये दादरा लोकगीत मुन्ना लाल शर्मा।
1: अरे टूट गयो सपना, टूट गयो

0: ये दादरा लोकगीत अभी आपने सुना मुलालाल शर्मा से, और अभी ने अभी से सुनिए इन्हीं से ये चेतावनी लोकगीत।
1: छोटी सी उमरिया, छोटी

0: आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कुछ और लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के पीछे।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: कार्यक्रम लोकरंग में अब जी सुनिए मंजू शर्मा का गाया ये विरहा।

मंजू शर्मा के गाए इस रसिया गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 7.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आप ही की फरमाइश पर कुछ फिल्म गीत। लीजिए पहले सुनिए आप तो ऐसे ना थे फिल्म में मनहर उदास को। निदा फाजली ने गीत को लिखा है, उषा खन्ना ने संगीत दिया है और सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे और इनके बहुत से साथियों ने। आप सभी अपनी फरमाइश पर लीजिए सुनिए आप तो ऐसे ना थे फिल्म में मन

आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म में अभी आपने सुना मनहर को, और अब लीजिए सुनिए ये सुदास और हेमलता को फिल्म चितचोर के इस दो गाने के लिए। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू और समस्त वैद परिवार ने। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म चितचोर का

ये थे यशुदास और हेमलता फिल्म चितचोर के इस गीत के लिए। और अब लीजिए सुनिए एक नया रास्ता, एक नया रिश्ता। इस फिल्म में लीजिए सुनिए भूपेंद्र को, निदा फाजली का गीत है, खयाम साहब ने धुन तैयार की है। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। ग्राम रौनी जैसे राजेश वाल्मीकि, विजय वाल्मीकि, अरविंद राजन, डॉक्टर महेश जैन, कल्लू जैन और इनके बहुत से साथी।

0: एक नया रिश्ता, इस फिल्म में अभी आपने सुना भूपेंद्र को। कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के पश्चात।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसी क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए। इस फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है जय ही रमन बाबा रेडियो श्रोता संघ ईसागढ़ अशोकनगर से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह, मनकुबाई, निशा, प्रियंका, इशिका, कपिल, ब्रजभान कुशवाहा, बालाराम मेहर, नरेश प्रजापति, लक्ष्मण रायकवार, दातार सिंह शेखावत और खुशी कुशवाहा की। इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे इन साथियों ने। ग्राम पोस्ट दहरोद, तहसील कोलारा शिवपुरी से माया यादव, अवि रावत, अनन्या रावत, विमल शर्मा, भरत शर्मा, उमा गोस्वामी, सुहानी गोस्वामी और शिव नारायण अग्रवाल ने। लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को फिल्म एक दूजे के लिए के इस गीत के लिए।

एक दूजे के लिए। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गीत, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आपने अपनी ही फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत सुने।

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ ही पलों में अनुप्रसारित की जाएगी, प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: भोपाल से प्रस्तुत है धार से लेके चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे की तपिश होने से आमजन हलाकान हैं। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर नगर

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में छठवें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनोर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील सचान का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं महमूद निजामी और साथियों की गई कुछ कव्वालियां। लीजिए सुनिए पहले ये कव्वाली।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं महमूद निज़ामी, और साथ ही इन्हीं की आवाज़ में कुछ कव्वालियाँ आज आप सुन रहे हैं। अब लीजिए सुनिए ये।

मुख्तलिफ रंग में सारी दुनिया से है सिलसिला आपका सारी और मेरे ख्वाब।

इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। इसमें आज आपने महमूद निसामी और साथियों की गाई कुछ कव्वालियाँ सुनी। FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। डीजी प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म अभिलाषा का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ से। मजरू साहब ने गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन ने धुन तैयार की।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार मजरू साहब के इस गीत के लिए। धुन तैयार की थी राहुल दा ने। दिल ही तो है इस फिल्म में अमरीजी सुनिए सुमन कल्याणपुर और मुकेश को। साहिर साहब ने गीत को लिखा है, रोशन ने धुन तैयार।

दिल ही तो है। इस फिल्म में अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मुकेश को, साहिर साहब का गीत था रोशन की धुन। और अभी जी सुनिए कंचन और शैलेंद्र सिंह को, गुलशन बाबा ने गीत को लिखा है, कल्याण जी आलन जी की जोड़ी ने धुन तैयार की है। इसे हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से।

कंचन और शालिनी सिंह को भी आपने सुना फिल्म रफू चक्कर के इस गीत के लिए। गुलशन बाबरा के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अब इसमें लीजिए सुनिए मुकेश को फिल्म सफर से, इसे हमने लिया है, गीत इंदिवर का है, संगीत

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सफ़र का ये गीत, कल्याण जी आनंद जी की धुन पर। गीत को आवाज़ दी थी मुकेश ने और इसे लिखा था इंदीवर ने। अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को। शैलेंद्र का गीत है, सचिन दानी संगीत दिया है और इसे हमने लिया है फिल्म गाइड से।

फिल्म गाइड में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, शैलेंद्र का गीत था और संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। और अब लीजिए सुनिए सत्यमेव जयते। इस फिल्म का ये गीत एस जानकी की आवाज़ है, फारूक कैसर ने गीत को लिखा है, बप्पी लहरी ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे एस जानकी को। इसे हमने लिया था फिल्म सत्यमेव जयते से। फारूक कैसर का गीत था, संगीत बप्पी लहरी ने दिया था। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बिना किसी वजह के मन का खाली खाली सा हो जाना। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी अनकही थकान को अपने भीतर लिए चल रहा है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से सुकून की तलाश करता है। किसी को पूजा और प्रार्थना में शांति मिलती है, कोई संगीत से अपने मन को हल्का कर लेता है, कोई प्रकृति के बीच पहुंचकर शांति महसूस करता है, कभी किसी का साथ सुकून लेकर आता है, तो कभी कभी कुछ देर मौन रहकर भी हम अपने मन को शांत करते हैं। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कभी आप अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं, आपके मन का सुकून कहाँ बसता है, कौन सी जगह, कौन सा साथ, कौन सी आदत या कौन सी बात आपके भीतर को शांत करती है। तो आज यही बात साझा कीजिए हमसे। हो सकता है कि आपकी बात किसी को मुस्कुराने और संभलने की वजह दे जाए। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए
1: जी। दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: लोकेंद्र जी, क्या हालचाल हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: इन दिनों तो दीदी बहुत भीषण गर्मी एमपी में चल रही है, बिल्कुल सभी जगह गर्मी बहुत तेज है। उसके अलावा जो कि लू चल रही है, उससे बचने के लिए भी सभी श्रोताओं से निवेदन है कि क्योंकि ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, और घर से निकले वो भी पानी की बोतल साथ में लेकर, और अपने जो कि तौलिया से अपना माने मुंह बांध कर और सर पे कोई माने कंचा फंचा डाल के बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सर ढक के और मुंह ढक के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस पे जो शरीर पे भूख तेज पड़ रही है तो उसके लिए अपने ही नुकसान के लिए अपने नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हो सके तो अपने जेब में एक प्याज की गठिया भी डाल के जाएं, तो उससे लू लगने की बहुत कम चांस रहते हैं।
0: तो चलिए, लू से बचाव के उपाय तो आपने बताए, अब हम चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं, आपको एक उद्वेलन होता है, तो सुकून की तलाश में आप किस दिशा में जाते हैं?
1: जी दीदी, उसे तो देखो एक बात है कि हर इंसान हर प्रकार का होता है और हर जगह अपना अपना माने जो सुकून मिलता है वहाँ जाता है, लेकिन सबसे अच्छा सुकून तो मैं एक ही बात कहूंगा जो कि मंदिर में सुकून मिलता है, अपने भगवान के दरबार में वो सुकून कहीं नहीं मिलता है। अपने अपने माता पिता नो जो सुकून मिलता है और जो मंदिर में मिलता है वो इसके सिवा और सुकून कहीं नहीं मिल सकता है।
0: क्या बात है। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो आप मंदिर चले जाते हैं, ये आप कह रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर जाते हैं जो कि बजरंग बली का मंदिर में, तो वहाँ जो कि भगवान के दरबार पे हमको ही नहीं मैम सभी लोगों को सुकून मिलता है और वहाँ पर इतनी शांति मिलती है।
0: जी, ये हमारे आस्था विश्वास का विषय होता है। दरअसल बात ये होती है कि कोई भी धर्म स्थल जो होता है, वहाँ जब समूह में लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जो एकत्रित होते हैं, उनकी सामूहिक जो ऊर्जा है समर्पण की, आस्था की, भक्ति की, प्रेम की, वो काम करती है वहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
0: जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा लोकेंद्र जी कि जब आप बेचैन होते हैं तो आप ईश्वर की शरण लेते हैं, और आपने कहा कि माता पिता के पास बैठते हैं। बिल्कुल सच है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ बाप के साये में एक अजीब सा सुकून होता है, वो दो शब्द कह देते हैं, आपके सिर पर हाथ फेर देते हैं, कह देते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इतने से ही बात बन जाती है।
1: उनके आशीर्वाद से मैम, बिल्कुल पहला आशीर्वाद तो अपने माता ही पिता है जो भी कुछ है।
0: बिल्कुल,
1: उनके माता माता पिता के सिवा और कोई नहीं है। उसके अलावा जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति मिलती है, और सभी लोगों से निवेदन भी मेरा यही है क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और आजकल इतने बच्चे लोगों को जो मोबाइल से इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कोई बच्चे को इतनी लत पड़ जाती है, कोई गेम खेलता है, कुछ करता है, तो हर वक्त अपने माता पिता को टाइम नहीं देते हैं। जितना होता है कहीं भी जाए, चाहे रिश्तेदारी में चाहे कहीं भी, तो मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं,
0: और बच्चों को इसका असर ये होता है,
1: नुकसान, अपनी आंखें भी कमजोर होती हैं, और अपने माता पिता जो बैठे उनको भी टाइम नहीं दे पाते, उनसे भी कुछ बातें करो, उनके पास बैठो, उनसे हालचाल पूछो, उनकी सेवा करो, तो भी अपन को आशीर्वाद देते हैं। अपने माता पिता है, अपने को ही करना है तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल में कम से कम टाइम दें और अपने अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें।
0: तो लोकेंद्र जी, आपने एक अच्छी बात कही कि स्क्रीन टाइम चूंकि बच्चों का बढ़ रहा है तो इससे भी एक एंजाइटी होती है बच्चों में, एक बेचैनी रहती है, उन्हें लगता है कि एक घबराहट है ना?
1: बिल्कुल।
0: इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तो आज आपने इस विषय पर एक अच्छी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने विचार रखे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: हेलो जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ, मैं गांव रणथंभौर जिला शाजापुर से हसन खां मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: हसन खां मंसूरी जी, कितने दिनों के बाद फोन किया है? अरे
1: पहली बार फोन किया मैम हमने, और मैं
0: वाह।
1: रेडियो लेकर बहुत साथ में घूमता रहता हूँ, और मेरे को रेडियो से मेरा बहुत प्रेम है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आज की जो जिंदगी है मैम, माल के हवस में, वो हवस में जो आदमी जो इधर उधर भटक रहा है, जो भटकने के बजाय वो उसकी सांसारिक जीवन का जो अंत है वो छोटा सी चीज लेके जाएगा। वो इतनी बड़ी दुनिया को, जिंदगी को जीकर आया है इंसान जिंदगी में जीने के लिए, तो उसका मकसद ये है कि हम अपने मालिक की बंदगी के साथ उसपे जो मिला है उस पर हमें भरोसा करके उसपे ही हमें जीना है।
0: तो ये तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात हुई। तमाम बातें जानने के बाद भी मन कभी कभी बेचैन होता है हसन जी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: हाँ।
0: जब ये बेचैनी होती है तो आप कौन सा उपाय करते हैं कि आप शांत हों?
1: अब ये देखो मैडम, ये तो है कि जो सरलता का जो मन है, जो भाव है, जो हमारे जो इसके अंदर है, जो है उसी पर संतोष करना पड़ेगा। बस मेरी तो एक ये राय है मैम।
0: तो आप संतोष तो करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि आप बहुत बेचैन हैं, आपको दुख हो
1: जी
0: रहा है,
1: जी जी
0: डिप्रेशन हो
1: जी
0: रहा है, ऐसी स्थिति में भौतिक रूप से आप क्या करते हैं? कुछ लोग किताबें पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग बच्चों के बीच चले जाते हैं, कुछ लोग
1: हाँ, तो
0: प्रकृति के
1: हम
0: बीच
1: तो
0: चले
1: देखो
0: जाते
1: किसान,
0: हैं।
1: खेती किसानी वाले हैं,
0: जी
1: और मैं आप रेडियो सुनता हूँ। जो मानसिक तनाव का जो भाव प्रभावित होता है, तो मैं एक विविध भारती, चाहे वो भोपाल का हो या इंदौर का हो या कोई बम्बई का हो, उसको सुनकर हम संतुष्टता पाते हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो आपका कहना है कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: विविध भारती सुनते हैं, जिससे आपका तनाव कम होता है। तो हमें बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: लगा हसन खां मंसूरी जी, कि आकाशवाणी यानी रेडियो आपके लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है, इलाज की तरह आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसी तरह
1: बिल्कुल
0: से
1: बिल्कुल
0: रेडियो से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद महोदया। मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरबिलास सिंह तोमर जी, कैसे हैं?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो सुकून की तलाश में किस ओर चलते हैं आप?
1: जी, जब जब जीवन के क्षण विघटित हो जाते हैं तब तब मैं रेडियो को और चलता हूँ। चेतना की किरण तब रेडियो बनता है मेरा।
0: तो आकाशवाणी समाधान प्रस्तुत करता है।
1: बिल्कुल, मनोरंजन भी और सटीक सूचना भी देता है और शिक्षाप्रद बातें भी देता है आकाशवाणी
0: जी। लेकिन इसके अलावा रेडियो तो आपको सहारा देता ही है, संबल है आपका।
1: इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ।
0: किस तरह के
1: सामाजिक कार्य? कोई है जैसे मैं सुबह उठ के 2 घंटे झाड़ू लगाता हूँ, गांव गली की सफाई, मंदिरों की सफाई। 14 वर्ष का नियम हो गया मेरा, ये प्रतिदिन 2 घंटे करता हूँ।
0: क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो बहुत बेचैन होने का वक्त भी नहीं होता। जी जी। तो हरबिलास सिंह तोमर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया। बहुत आभार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार। अपना परिचय दें।
1: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: भागचंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के
1: बिल्कुल जी,
0: विषय पर?
1: आज के विषय पे कहेंगे दीदी, जैसे आप बेचैनी होती है, कोई टेंशन में होते हैं, तो हम तो धार्मिक स्थल पे भी जाते हैं, वहाँ पे अपना मन बहला लेते हैं, और संतुष्टि रखना सहनशीलता जरूरी है।
0: तो आप किसी धार्मिक स्थल का रुख करते हैं जब बेचैन होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
0: जी, इसके अलावा और कोई उपाय?
1: नहीं दीदी, और हम तो ऐसे ही हैं कि देखो, सहनशीलता जरूरी है। अगर कोई टेंशन में दिमाग है तो उसके इलाज सहनशीलता रखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों के साथ बातचीत करने लगते हैं, इससे भी कुछ मन हल्का होता है ना? कई बार
1: हाँ,
0: बुजुर्गों के
1: बिल्कुल
0: पास
1: दीदी,
0: मन हल्का होता है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो चलिए भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आज के विषय पर अपना विचार
1: बिल्कुल
0: रखा।
1: दीदी। कैसे हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: आप तो, हम तो दीदी बहुत बढ़िया है। और दीदी, हम पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं
0: तो भागचंद साहू जी, ऐसे ही स्वाद बिखेरते रहिए। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने विचार रखा। बहुत बहुत शुक्रिया
1: बिल्कुल
0: आपने
1: ठीक
0: फोन किया। सुनिए ये
1: है
0: प्यारा सा
1: दीदी,
0: गीत।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: नाम बताएं।
1: जी, हम जिला मिर्जापुर गांव नदौली से शुभाकांत बोल रहे हैं।
0: शुभाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी जी, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी धूप का आनंद ले रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं
0: हम। धूप का आनंद ले रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है ना। अच्छा शुभाकांत जी, हम जानना चाहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहेंगे?
1: जी, हमारा भी यही कहना है कि हम रेडियो बहुत, मतलब जब हमारा जिंदगी जब हो जाता है तो हम यही रेडियो सुनते हैं, संगी साथी साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते टहलते हैं, मन हमारा लगता है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं तो सबसे पहले आप रेडियो के पास जाते हैं, ये आपका कहना है, और खेलते हैं।
1: म्यूजिक सुन लेते हैं तो दिमाग हमारा फ्रेश हो जाता है।
0: अच्छा, तो संगीत एक जादू सा असर करता है। बात सही है कि संगीत को तो थेरेपी की तरह भी आजकल हम प्रयोग में लाते हैं ना।
1: जी, हमारा जिंदगी यही मिलाता है, अगर सुकून नहीं उसे होता है तो हम लोग रेडियो के बाद हम लोग संगी साथी जाते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, हम लोग घूमते फिरते हैं,
0: खेलते हैं, कैसे
1: मन
0: खेल
1: रहता
0: खेलते
1: है।
0: हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं?
1: हम लोग छुआ छुपाई खेलते हैं और चोर सिपाही खेलते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। खेल तो एक स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम है ही, तो आप खेल पाते हैं और घर से बाहर निकलकर खेलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: खेलने से हमारे शरीर को तो क्षमता बढ़ती है ना।
0: खेलों से आप मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी सशक्त होते
1: जी
0: हैं।
1: जी हमारा भी श्रोताओं से यही अनुरोध है कि आप घूमे टहले खेले या अपने जिंदगी भर देश बहुत अच्छे आनंद ले सको।
0: जी, और आपने कहा कि हम बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है कि जब आप परेशान हो, आपका मन बेचैन हो, तो अपनी बात किसी से जब हम कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना, और उसका
1: हल्का हो जाता
0: समाधान
1: है,
0: भी
1: दूसरे
0: मिलता
1: में
0: है।
1: अपनी बात कर दिया जाए तो बहुत हल्का हो जाता है कि चलो उससे भी कह दिया भाई, मन कुछ सहारा होगा हमारा, वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: विचार हमारे संग बैठ के बिताएगा तो भला है वो बैठिए।
0: जी, तो परेशानी के बीच संवाद की स्थिति बनी रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, तभी हम सुकून की तरफ चलते हैं। तो शुभाकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो उपाय बताए हैं, मुझे लगता है कि बाकी के जो हमारे श्रोता हैं उन्हें भी इस पर अमल करना चाहिए, है ना। खेल की आपने जो बात की है, खेलों से बहुत दूर होते जा रहे हैं हम आजकल, तो खेलों की तरफ जब हम लौटते हैं तो यूं ही परेशानी कम होने लगती है। तो शुभाकांत जी, आज आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार रखे, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तुमको देखा

0: हेलो
1: जी नमस्ते दीदी, मैं जगत सिंह चौड़ाल ग्राम पिपलिया बराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहा जी। जी
0: नमस्कार जगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी
0: कैसे हैं
1: जी बढ़िया है दीदी जी।
0: आज की जो
1: पहले तो हमें आपसे बात करके बहुत खुशी होती है।
0: हाँ, हमें भी अपने श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज के विषय पर क्या कहेंगे?
1: जी मैडम जी, आज क्या है कि जो कोई सी चीज के टेंशन हो जाए तो अपन मनोरंजन में काट देते हैं समय।
0: अच्छा, जब आप बेचैन होते हैं तो मनोरंजन में समय काटते हैं।
1: जी अपना
0: और
1: रेडियो चालू करा तो उसमें अपन ने जो अपना दिमाग खराब कछु में भी हो गया तो
0: जी,
1: अपन रेडियो से लगान है अपनी ज्यादा, तो
0: हाँ जी
1: उससे अपन मनोरंजन से अपन सही हो जाते अपना दिमाग।
0: जी तो गीत संगीत सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है और धीरे धीरे मन शांत होता है।
1: शांत हो जाता है क्योंकि मनोरंजन से भी एक रेडियो भी बहुत बड़ी चीज है। अपना दोस्त बना के चलो तो बहुत बड़ी चीज है रेडियो भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है।
1: क्योंकि रेडियो से बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है, अच्छी बात मिलती है और देश विदेश की खबर मिलती है और आप सब जगह की ऐसी बातें मिलती हैं कि उससे अपन को दिमाग में समझने चल जाएगा। जैसे कोई दुर्घटना होती है गाड़ी वाहन से तो वो भी अपन को समझ के चलना चाहिए कि बहुत सी चीजें हैं।
0: बहुत सी बातें आपको रेडियो के माध्यम से मालूम होती हैं।
1: जी
0: तो हालांकि हमारे बहुत से श्रोताओं ने कहा कि हम रेडियो सुनते हैं जब मन का सुकून तलाशते हैं, तो इसके अलावा और क्या उपाय करते हैं हम?
1: जी अब वो उपाय तो यही है अपनों, तो क्योंकि अपन तो अब दुकान है तो इसमें समय पास होता है
0: तो दुकान
1: जाने
0: में
1: के
0: बैठ
1: बाद।
0: जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं और रेडियो साथ में जब आपसे बातें करने लगता है तो आपका मन शांत होता है। तो जगत सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो से जो आपकी ये मित्रता है ये बनी रहे, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: जी नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: दिल क्या

है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम, मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 छत्तीसगढ़।
0: सुरेश कुमार सारथी जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम, अभी तो भीषण गर्मी है और नौटंका भी लग चुका है।
0: जी जी जी जी तो भीषण गर्मी के बीच हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब कभी जिंदगी में आप बहुत बेचैन होते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो अपने सुकून की तलाश कहाँ करते हैं, क्या उपाय करते हैं?
1: सुकून के उपाय तो दो तीन उपाय करते हैं मैम, जैसे कि गीत संगीत सुनना है, रेडियो सुनना है, अच्छे अच्छे भजन सुनना है, पुस्तक पढ़ना है, पेपर पढ़ना है मैम।
0: वाह, किताबें पढ़ते हैं आप, किस तरह की?
1: सब संग्रहालय में जाके अनेक प्रकार के किताब पढ़ते हैं मैम,
0: अच्छा।
1: कहानी वगैरह है,
0: हाँ, बहुत
1: संकलन
0: अच्छी
1: वगैरह
0: बात
1: है
0: है,
1: या मौखिक सामान्य ज्ञान है।
0: बहुत अच्छी बात है सुरेश जी। आज के समय में आप जाते हैं किसी लाइब्रेरी में और पुस्तकालय में जाते हैं और पढ़ते हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है। हाँ।
1: हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है मैम,
0: जी जी जी जी बहुत अच्छी बात है।
1: और साथ में पेड़ पौधा लगाते हैं मैम, अभी तो बरसात आने वाली है तो बिल्कुल हम दो चार पेड़ उगाएंगे, उसका देखभाल करेंगे मैम। भाग दौड़ की जिंदगी में सुकून तो कहीं ना कहीं हमको प्राप्त तो करना होता है।
0: बिल्कुल। तो सुरेश जी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जब आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप जो उपाय करते हैं वो ये है कि पहले तो गीत संगीत सुनते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, रेडियो तो हमारा एक संगीत के बहुत बड़ा मायने रखता है मैम, रेडियो हम डेली सुनते हैं मैम,
0: हाँ, बहुत
1: चाहे
0: अच्छी
1: हम
0: बात
1: दुखी
0: है।
1: रहें चाहे सुखी रहें, रेडियो सुनना
0: हाँ
1: तो हमारा एक हिस्सा है हमारे जीवन का,
0: जी
1: हम 40 साल से रेडियो सुन रहे हैं मैम,
0: जी जी तो रेडियो आपके दुख सुख का साथी है
1: दुख सुख का
0: ना?
1: साथी है मैम,
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सब बात एक बात मैम, हमारे जीवन में चिट्ठी पत्री लिखना बहुत एक अहम भूमिका है मैम,
0: अच्छा।
1: जितने भी आकाशवाणी केंद्र में है, आपके भोपाल में भी हमारे पत्र जाते रहते हैं, हम अनेकों जगह के आकाशवाणी में फरमाइशी पत्र भेजते हैं मैम,
0: क्या बात है, बहुत अच्छी आदत
1: जबलपुर
0: है
1: है,
0: ये।
1: भोपाल है,
0: जी
1: अपना श्रीनगर है, छिंदवाड़ा है, रोहतक हरियाणा है, दिल्ली है, और हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है, रायपुर, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर।
0: जी, तो सभी जगह आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चिट्ठियों का जो संसार है वो अब लगभग समाप्त सा है। हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता हैं वही इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। तो आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, रेडियो सुनते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप पुस्तकालय जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, है ना? तो आप किताबों का साथ करते हैं,
1: बुक
0: ये
1: का
0: भी बहुत
1: साथी
0: अच्छी
1: होता है
0: बात
1: मैम।
0: है। जी, तो सुरेश कुमार जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। आप तक भेजते
1: बहुत
0: हैं एक
1: बहुत
0: प्यारा सा
1: धन्यवाद
0: गीत।
1: मैम, हमारे सारथी परिवार की ओर से आपके केंद्र के पूरा यूनिट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार। राम बताइए।
1: रमेश साहब बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश शाह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार जिले से का रहने वाला हूँ
0: बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा,
1: जी।
0: तो हम जानना चाहते हैं रमेश जी कि जब कभी ज़िंदगी में आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो ख़ुद को कैसे संभालते हैं? सुकून की तलाश में क्या करते हैं आप?
1: अजी तो अपने तो घर में मिल माल के रहना चाहिए जी,
0: मिलके तो
1: ऐसे ही
0: रहना
1: है ना।
0: चाहिए, लेकिन होता यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं या जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन बहुत बेचैन होता है, दुखी हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब कभी आपके मन की शांति छिन जाती है, तो मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं?
1: बस जी अपना प्रेम से ही रहना चाहिए अच्छा से जी।
0: बच्चों के साथ खेलने से भी कई बार अच्छा लगता है,
1: हाँ जी, तो ये तो बात सही है।
0: तो आप बच्चों का साथ करते हैं?
1: हाँ जी, बच्चे के साथ भी बैठे हुए हैं जी।
0: तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतता है। जब कभी आप बहुत तनाव में हो, तो उनकी जो निश्चलता है, उनकी जो मुस्कान है, सारा तनाव दूर कर देती है ना?
1: जी।
0: तो चलिए रमेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से बने रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार,
1: नमस्कार
0: कौन बोल रही हैं
1: जी। मैं सरिता शर्मा गुना से बात कर रही हूँ। मैं शिक्षक हूँ जी।
0: अच्छा, आप पढ़ाती हैं? किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: मैं 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ जी।
0: क्या बात है, तो बच्चों में संस्कार डालने का आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: तो हम ये जानना चाहते हैं सरिता जी, कि आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें बहुत सी चिंताओं में हम उलझ जाते हैं और बहुत बार मन
1: जी
0: बहुत बेचैन हो जाता है ना? सुकून
1: हाँ
0: की तलाश हर इंसान को है, तो मन की शांति के लिए, सुकून के लिए आप कौन से
1: मन
0: उपाय अपनाती हैं जब आप बेचैन होती हैं?
1: की शांति के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, जिससे कि मन की शांति मिले। और भगवान की भक्ति में संगीत सुनते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, या कोई भगवान का जाप मन में करते रहते हैं तो उससे भी शांति मिलती है
0: क्या बात है, बिल्कुल। नाम जप जब हम करते हैं तो भीतर हमारा जो है वो ठहराव एक पैदा होता है ना, स्थिरता आने लगती है। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करती हैं?
1: अधिकतर तो मैं यही उपाय करती हूँ, भगवान के मंदिर में बैठ जाती हूँ, थोड़ा ध्यान लगाना और ये संगीत सुनना। कभी कभी फिल्मी संगीत में भी कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको भी सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है।
0: बिल्कुल, फिल्मी गीतों में कई
1: रेडियो
0: बार
1: सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मैं रेडियो अधिकतर सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: अब कार्यक्रम का तो ऐसा नहीं है, मेरा फिक्स नहीं है। मैं जब भी ऑन करती हूँ तो कोई ना कोई, जैसे आकाशवाणी भोपाल है और अपना FM है, गुना का है, तो ये मैं कुछ कार्यक्रम इसमें सुनती रहती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सरिता जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि जब कभी आप बेचैन होती हैं तो भक्ति संगीत सुनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नाम जप करती हैं। सच है कि जब हम बेचैन होते हैं और मौन हो जाते हैं, मौन होकर भीतर ही भीतर जब नाम स्मरण करते हैं तो मन बहुत स्थिर होता है और हमें बहुत सुकून मिलता है। और इसके अलावा गीत संगीत की आपने बात की, सच है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समाधान की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना? ऐसे बोल होते हैं कि आपकी बहुत सी परेशानी कई बार दूर हो जाती है उन बोलों को सुनकर। तो सरिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज अपने मन के सुकून के जो रास्ते आपने हमारे साथ बांटे, वो सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी को थोड़ा सहज, थोड़ा और सुंदर बनाने वाले एहसास थे। इसी तरह कोशिश करके अपनी जिंदगी में सुकून के रास्ते तलाशते रहिए, क्योंकि जिंदगी है तो संघर्ष भी है, थकान भी है, चिंताएं भी हैं, अवसाद भी है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन इन सब के बीच अपने लिए कुछ पल सुकून की तलाशना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि भागती हुई इस जिंदगी के बीच आप अपने लिए कुछ पल सुकून के जरूर बचा कर रखेंगे। इसी संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों सरकार और पार्टी गठबंधन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार जिला स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले

0: दिन तक 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग के अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप फुटबॉल के ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने कल मालदीव को 11-0 से हराया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है लता मंगेशकर की आवाज इंदिवर का गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है सुहागरात। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, विश्वनाथ साहू, गुलाब दास मानिकपुरी और भागवत वर्मा, इन्होंने दतरेंगी से ये पत्र लिखा है हमें।

पतंगा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़। राजेंद्र किशन ने गीत लिखा है, संगीत है सी रामचंद का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित और छोटू के साथ डुंडुन और समस्त परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है किशोरी बोस, प्रियंका, बसंत, सरोज, अजीत, मोनिका, हिमांशी और नितिन ने। इनका साथ दिया है आशीष और ममता ने भोपाल से। तो आइए सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, जान निसार अख्तर के बोल हैं, संगीत जयदेव का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका, वंश और हार्दिक ये इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इस गीत को पसंद किया है राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके समस्त परिवार ने। ये पत्र हमें मिला है सिंहपुर बड़ा से, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और साथियों ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। रूपाली मालवी, अर्चित मालवी, सुमन मालवी का पत्र हमें मिला है होशंगाबाद रोड भोपाल से। तो आइए सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जंगली फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय इस गीत को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित के साथ हैप्पी राय ने ये गीत सुनने की ख्वाहिश जताई है।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी 13वीं

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र का पांचवा प्रकरण अपरीक्षित कारक सुनना प्रारंभ किया, जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर सुनो।
2: कहो मित्र।
1: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
2: अच्छा।
1: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्यकुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद चारों मित्र उद्भट विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने परामर्श किया।
2: क्या?
3: मित्रों, आज हमें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
4: हाँ, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
5: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।
6: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
4: अवश्य, अवश्य, अवश्य, अवश्य, अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए? यहां तो दो रास्ते हैं।
3: वो देखो मित्र, किसी वणिक की शव यात्रा जा रही है।
4: ये देखो,
3: क्या
4: ग्रंथ में लिखा है, महाजन जिस मार्ग से जाए अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए।
3: अच्छा,
0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा। तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,
5: मित्रों तनिक ध्यान दें।
1: हाँ।
5: इसमें लिखा है उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर शत्रुओं से घिर जाने पर राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
3: मित्रों, अर्थात ये गर्दभ हमारा स्वजन है, तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ मित्रों, गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
2: भद्रगण, हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है, जरा देखो तो।
4: मित्र, ये तो ऊंट है।
3: अच्छा,
4: ये तो अत्यंत तेज गति से चलता है।
3: मित्रों, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
4: अच्छा,
3: अब देखो इसमें लिखा है धर्म की गति तीव्र होती है। हो ना हो, ये अवश्य ही धर्म है।
4: धर्म है।
5: क्या ये धर्म है?
3: हाँ।
5: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
2: बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों, इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
3: चलो मित्रों,
2: चलो चलो चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
2: अरे मित्रों,
1: थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर लेते हैं।
3: विश्राम करते हैं।
2: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर ले।
3: चलो।
1: परंतु मित्र, ठहरो। इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो
3: भी ठीक है,
4: बिना जाने स्नान करना ठीक नहीं है।
2: परंतु मित्र, आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए एक पलाश का पत्र बह रहा है। डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। हाँ, अब मैं तो चला स्नान करने। बचाओ, बचाओ।
3: अरे अरे मित्र, ये तो डूब रहा है।
1: अरे
3: अरे, वो पलाश का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
1: अरे
3: ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई, मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
1: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
3: कोई तो बचाओ उसे।
1: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ तो प्रयास करो भाई। अरे अरे, ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
4: चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
3: पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो।
4: इसमें लिखा है, सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
3: अच्छा।
4: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
1: ऐसा लिखा है?
4: हाँ हाँ, यही लिखा है।
1: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का मुंह छोड़ देता हूँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्ति कारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए, लोगों के उपहास के पात्र भी बने। हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है। हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध,
0: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है। अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता, तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, जिससे मैं घर जा सकूं।
1: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है, और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
0: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो, यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के रहने योग्य नहीं है, और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं बाबा, मैं तो चलता हूँ।
1: नहीं, स्वर्ण सिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर।

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमरशक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमरशक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

0: हे कुल देवता, मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु। मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्यों नहीं?
1: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
2: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
3: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाएं।
4: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
5: प्रणाम पिताश्री।
3: आयुष्मान भवा। स्वागत है आचार्यवर, आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।
4: नहीं महाराज, चिंता चिता समान होती है। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर खाया जाता है, और अब आपके ये तीनों पुत्र आपकी सारी चिंताएं ले लेंगे।
3: महामंत्री सुमति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ।
5: नहीं पिता महाराज, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं। राजा को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पूरे तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है। चाहे तो आप हम तीनों की परीक्षा ले लें।
3: पुत्र, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे? ये आपके खाने खेलने के दिन है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
6: खाने खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है महाराज। हम तीनों भाई चाहते हैं आप अब किसी भी प्रकार से अपने को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देंगे।
1: पुत्र बहुशक्ति, आप सब में बड़े हैं, आप हमें बताएं एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं।
6: सर्वप्रथम महामंत्री सुमति को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, एक सच्चा मित्र कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, हर सुख दुख में आपके साथ होता है, आपको सही राह दिखाता है।
3: अद्भुत, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
7: महाराज, अधिक प्रसन्नता दर्शाना भी राजा के लिए उचित नहीं है। ये वो पल होते हैं जिनकी प्रतीक्षा शत्रुगण करते हैं। राजा को सर्वदा अपने क्रोध और प्रसन्नता के साथ दुख को भी सीमित रूप से ही दर्शाना चाहिए। मेरे अधिक बोलने के अपराध को क्षमा करें पिता महाराज।
3: नहीं नहीं पुत्र, आप सबकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत घोल दिया हो।
5: पिताश्री, गुरुदेव

0: बहुत दूर से पैदल आए हैं, वह थक गए होंगे, उनके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं यह कार्य करूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवता का रूप होते हैं। अपने भोजन से आधा भाग अतिथि को देना पुण्य होता है। उनके पैर धोने से कन्या के लिए योग्य वर मिलता है। अतिथि नारायण का रूप है।
1: आपका कथन सर्वथा उचित है वत्स। हे आचार्यवर, मैं किस प्रकार आपका सम्मान करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है, परंतु मैं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं कि आपको 100 गांवों का आधिपत्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं गुरुदेव?
2: नहीं महाराज, नहीं। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं कि मुझे धन, भूमि इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के इस संध्या काल में अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। महाराज, आपके पुत्रों का जो दायित्व मैंने लिया था, मैंने पूर्ण किया। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे देने वाले धन से अपने राज्य में एक शिक्षा संस्थान बनवाएं, जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान दे सके। आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
1: आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। महामंत्री सुमति, आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू करवा दें और पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि आज मेरे पुत्रों के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाए।
3: जो आ गया महाराज।

हमारी ये पंचतंत्र की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। आप सबका साथ बड़ा आनंददायी रहा। आशा है आप सबने भी आनंद लिया होगा। हमारी ओर से आप सबको सादर नमस्कार।

का रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, मिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन किया। श्री चौहान ने इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सरकार और पार्टी संगठन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव कल खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन कल 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1 बजे हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की

नमस्कार सखियों, महिला सभा लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी नीलम चौरे। और ये सब संभव हो पाया है सखियों रेडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाने का। रेडियो एक ऐसा सफर जिसने समय के साथ कदम मिलाते हुए हर दिल तक अपनी आवाज पहुँचाई। आकाशवाणी 90 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा को जारी रखते हुए शुरू करते हैं।

आपसे बातों का सिलसिला। सखियों कहते हैं हर वक्त कामयाबी साथ नहीं होती, कोई भी हार आपके हौसले से बड़ी नहीं होती। वाकई सखियों, अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मन निराश हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में सखियों असफलता अंत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा भी गया है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। सखियों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं हताश निराश, तो कुछ लोग उसी से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। सखियों, माना कि हम महिलाओं के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन इन सब के बीच जो सखियां हार नहीं मानती वही आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाती हैं। सखियों, हमें यह समझना होगा कि असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, सही दिशा दिखाने के लिए आती है। कभी कभी अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब यह नहीं कि हम उस काम के योग्य नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना है, पूरी बौद्धिक क्षमता और मेहनत के साथ। सखियों, जब भी असफल हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।

ऐसा ही साथ है सखियों हमारा और आपका सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी है। और वो योजना है सखियों, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान योजना, जिसकी शुरुआत की गई। यह योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब बेहतर रूप से आगे बढ़ाया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वस्थ रहें और पढ़ाई में भी रुचि बढ़े। इस योजना से बदलाव आया सखियों, अब सरकारी सहायता स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन तो दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार हुआ और स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ी, साथ ही कुपोषण की समस्या भी कम हुई। इसके साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, जिसमें महिलाओं को भोजन बनाने का काम मिल रहा है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। सखियों, यह योजना केवल भोजन देने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को उनके स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने का सफल प्रयास है। सखियों, हमारे आसपास कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, संतुलित पोषण आहार देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार तो काम कर रही है बखूबी, हम भी उनके इस काम को सफल करें। और अब बारी है सखियों गीत।

0: तो क्यों अब समय हो रहा है आपको किसी ऐसी सखी से मिलवाने का जो आत्मनिर्भर है। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, आज की महिला केवल सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें साकार करने का साहस भी रखती है। खाना बनाना, मेहमान नवाजी और स्वाद जो कभी केवल घर तक सीमित माने जाते थे, आज वही हुनर महिलाओं को स्वरोजगार और पहचान दिला रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला से बातचीत करने वाले हैं सखियों, जो एक कैफे की सफल संचालिका है। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती अमृता मनदीप सैजल, जो कैफे की ओनर हैं और अपने कैफे के माध्यम से न केवल स्वरोजगार कर रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी आपका हमारे कार्यक्रम में मेरी उड़ान में।
1: नमस्कार नीलम जी।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोता सखियों को यह बताइए कि कैफे खोलने का विचार आपके मन में कैसे आया?
1: हाँ जी नीलम जी, ये जैसे आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि खाना बनाने का शौक और खाना खिलाने का शौक, ये दोनों शौक मुझे बचपन से ही हैं। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो खाना, ये दोनों शौक मेरे खून में ही हैं। मैंने बचपन से देखा है, मेरे मम्मी होम साइंस के स्टूडेंट थे और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और मेरे डैडी उनकी पूरी पूरी मदद करते थे और मेरी मम्मी के पास एक उनकी होम मतलब कुकरी की किताब थी, तो उस कुकरी बुक से देख देख के खाना बनाना सीखती थी और वो मुझे खाना बनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो वो खाना बनाते बनाते इतना शौक बन गया और फिर मुझे तारीफें मिलने शुरू हो गई, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लग गया। और मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने क्या मतलब बड़ी बड़ी मतलब राजमा चावल बनाने शुरू कर दिए, पकौड़े, घर के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए और मेरी सखियाँ मतलब मेरी फ्रेंड्स क्या है घर पे खाना स्पेशल खाना डिमांड करके घर पे आना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब उन्हें अच्छा लगने लग गया मेरे हाथ का खाना और रिश्तेदारों को भी अच्छा लगने लग गया। और एज सच मैंने स्टडीज में एमबीए किया हुआ है तो और तो थोड़ा व्यवसाय की तरफ मेरा माइंडसेट है।
0: इसका मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी डिशें बना लेती हैं और आप इसी फील्ड में मतलब जाने का आपने सोचा?
1: 2021 में मेरे फादर इन लॉ के एक्सपायर होने के बाद हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए, तो हमारा यहाँ पे व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस क्षेत्र में नया कुछ करने का सोचा और इसलिए हमने कैफे ओपन करने के बारे में विचार विमर्श किया।
0: तो जब आपने कैफे शुरू किया तो शुरुआत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
1: देखिए, व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी भी इसके किसी भी फील्ड में आप बिजनेस ओपन करें तो कठिनाई आती ही आती है। ऐसे ही कैफे के क्षेत्र में भी बहुत कठिनाई आई और एक महिला होने के नाते कह लीजिए, चाहे आप एक व्यक्ति विशेष के रूप में कह लीजिए, कठिनाई तो आती ही है। जैसे कि शुरू में बहुत लोगों ने बोला कि आपको लॉस होगा, इंदौर में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो नई नई डिशेस ट्राई नहीं करते हैं, वो पुराने पोहा जलेबी से ऊपर नहीं उठते हैं, आपको कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। मगर मुझे ऐसा लगा कि टाइम के साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता है, टाइम के साथ साथ लोग ऊपर मतलब अपने स्वाद के अनुसार नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए अपने कैफे में नए नए प्रयोग लेके आए ताकि लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें।
0: बहुत अच्छी बात है अमृता जी। और जैसा कि एक महिला उद्यमी हैं आप, और महिला उद्यमी होने के नाते क्या आपको कोई विशेष कठिनाई या कोई अनुभव आप जो बताना चाहें?
1: देखिए, कैफे का अनुभव एक डिफरेंट अनुभव होता है। कोई भी लोग कैफे में क्यों आना पसंद करेगा, वही कॉफी आप घर में बैठ के भी पी सकते हैं और कैफे में भी आके पी सकते हैं। कैफे में आपको जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं, आप एक एक्सपीरियंस के लिए कैफे में आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे कैफे में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इंटीरियर है, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी स्किल्स जो रहती हैं, जो हमको आपको कोजी वाइब्स मिलती हैं, जो आपको वेलकमिंग जो वहाँ पे महसूस होता है, वो हमारे कैफे में वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे हमारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, हम आपको वहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होने देते हैं। हमारे कैफे का इंटीरियर बहुत अच्छा है, जो मैंने खुद किया है, खुद लोगों को ध्यान में रख के, बच्चों को, आज की जनरेशन को प्रेरित करके कोटेशंस कुछ ऐसी लगाई हैं जो बच्चे को लोगों को मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। और हमारे में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, जो लोग म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं वो वहाँ पे आते हैं, सिंगिंग करते हैं, बजाते हैं और अपना टाइम अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, इसका भी पूरा अरेंजमेंट रहता है। और जो खाना बनता है वो भी पूरे प्रॉपर हाइजीन और हेल्दी तरीके से बनता है, जैसे पिज़्ज़ा बेस रहता है, ब्रेड्स वगैरह रहती है, वो भी बिल्कुल फ्रेश रहती हैं।
0: इसका मतलब आप लोगों के, कस्टमर का काफ़ी ध्यान रखती हैं और उनके खासकर स्वास्थ्य का।
1: देखिए जी, कस्टमर इज़ अ किंग। कस्टमर के साथ साथ अगर आप ये सोचिए कि जब आप किसी कैफ़े में जाती हैं तो आप किस चीज़ों का वो उम्मीद रखती हैं, तो वही चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं कल किसी कैफ़े में जाऊँगी तो मैं किन चीज़ों की उम्मीद रखूँगी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भी उन चीज़ों को अपने कैफ़े में इंक्लूड किया है।
0: बिल्कुल, आपकी जर्नी और आपका सफ़र सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है अमृता जी। तो हम जानना चाहेंगे कि इस सफ़र में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा आपके लिए।
1: देखिए जी, परिवार का सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण था। और यकीन मानिए जी, मैंने तो मेरे माँ बाप से और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप से मैंने कुकिंग स्किल्स का सीखा है और मेरे फादर इन लॉ जो गांव से अकेले आके उन्होंने इंदौर शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं उनको पूरा इंदौर शहर जानता है। और मेरी मदर इन लॉ आज भी मतलब एजड हैं मगर उनको अपना डेयरी फार्म चला रही हैं, तो उनसे मैंने ये व्यवसाय स्किल्स का सीखा भी। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, इस कोई भी काम आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकती हैं। तो ये चीज़ें सबका मतलब क्या है, मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीकों से मेरे माइंड में ये चीज़ें डाली है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब मोटिवेशन एक परिवार का पूरा मेरे को सही

0: मिला है जिससे मैं आगे बढ़ पाई हूँ।
1: बिल्कुल अमृता जी, आपकी बातें सुनकर हमारी सखियां भी सुन रही हैं और आपसे प्रेरणा ले रही हैं। हमारी सखियां भी इस व्यवसाय को करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, सखियों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाएं अगर व्यवसाय में हैं या महिलाएं व्यवसाय में नहीं हैं तो अपने आप को कमतर ना आंकिए। और महिलाओं के लिए एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि विरासत में हमें मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। तो महिलाएं इतनी मेहनती हैं, वो अपने आप को कमतर ना आंकें, और अगर वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा रखें, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखें और शुरू में छोटे से शुरुआत करें और फिर बस निकल पड़े, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। किसी से प्रेरणा ले सकती हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, और जो आपका शौक है, जो कभी आपका शौक रह सकता है, रह चुका है, वो आप उसको व्यवसाय में भी तब्दील कर सकती हैं। अगर आप अच्छी डांसर हैं तो आप डांस क्लास शुरू कर सकती हैं, आप अपनी सिंगिंग क्लास शुरू कर सकती हैं। तो आपके खुद के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को तराशिए, उसको तराशने के लिए आपको खुद से प्यार करना होगा। आप खुद से प्यार करिए, अपने गुणों को तराशिए और अपने व्यवसाय पे ध्यान दीजिए।
1: अमृता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो सखियों, इनसे मिलकर, इनसे बातें कर हमने जाना जो एक सीख देता है, हुनर छोटा नहीं होता। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए।

सखियों, इस गर्मी में रूखे बेजान बालों का आप ध्यान कैसे रखें? आप यही सोच रही है ना? बिल्कुल सखियों, गर्मियों की तेज धूप, पसीना और धूल हमारे बालों की नमी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और बाल रूखे, उलझे हुए और बेजान से लगने लगते हैं, है ना? लेकिन थोड़ी सी सही देखभाल अपनाकर आप अपने बालों को फिर से मुलायम और स्वस्थ बना सकती हैं। रूप लावण्य में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ घरेलू आसान से उपाय। सखियों, सबसे जरूरी बात इन दिनों शरीर को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत होती है, ये तो आप जानती हैं। वैसे ही बालों को भी नमी चाहिए, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और कोशिश करें बालों को बहुत ज्यादा ड्राई ना होने दें। इसके साथ ही सखियों, एक आसान घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं, सखियों दही का इस्तेमाल। सखियों, दही के साथ शहद मिलाकर बालों में लगाएं और ठंडे गुनगुने पानी से बालों को धोएं। जो प्राकृतिक कंडीशनर होते हैं, इससे बाल मुलायम चमकदार बनते हैं। और अब दूसरा उपाय है सखियों, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बालों और स्कैल्प पर लगाएं, ठंडक मिलती है और रूखापन भी कम होता है। एक छोटी सी आदत भी बदलना है सखियों, बाल धोते समय हमेशा सामान्य या ठंडे पानी से बाल धोएं, नमी बनी रहेगी। इसी तरह सखियों, तेज धूप के चलते बालों को कॉटन दुपट्टे से ढकना भी अच्छा उपाय है, धूप से तो बचाते हैं साथ ही धूल से भी। सखियों, थोड़ी सी सावधानी बालों में

सखियों, अब बढ़ते हैं रसोई की ओर, हमारे क्रम फूड जोन में। सखियों, तेज धूप, बढ़ती गर्मी, बस लगता है कि ऐसे में मन चाहे पेय मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, जिसको पीने मात्र से ही गला तर और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सखियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिंट नींबू पंच। फूड जोन में सामग्री नोट करें सखियों, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, पुदीने की पत्तियां 4-5, 1/2 चम्मच काला नमक, चाट मसाला वो भी 1/2 चम्मच। अब ठंडाई के लिए 1 कप कुटी बर्फ और अंत में 1 गिलास सादा पानी। आप सखियों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के रस के साथ उसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, चाट मसाला और शहद को एक साथ मिलाकर मिक्सर में पीस लें। आप ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालें, तैयार मिश्रण को पानी में डालकर खोलें। इसके बाद ग्लास में नींबू की स्लाइस और पुदीने की पत्तियों से सजाकर सर्व करें। इसको पीने से पेट की गर्मी भी कम होती है सखियों, साथ ही पाचन के लिए भी फायदेमंद होगा इस गर्मी में। तो पीजिए सखियों मिंट नींबू पंच, जो बिल्कुल शुगर फ्री है। और अब सुनवाते हैं आपको ये मीठा सा प्यारा सा गीत।

गर्मियों का मौसम है, तेज धूप और लू भी लेकर आता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि लू लगने से कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, थकान, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो काम की बातों में लू से बचने के उपाय हैं सखियों, दोपहर के समय जितना हो कम निकलें। यदि काम की वजह से आप जा रहे हैं तो सिर पर दुपट्टे, टोपी या छतरी से अपने आप को ढकें। माना कि छुट्टियां हैं सखियों, घूमने जा रहे हैं, पानी की बॉटल साथ रखें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। साथ ही नींबू, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना जैसे तरल पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सखियों, इन दिनों ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन की जगह आप अंकुरित मूंग दाल, मोठ चना का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। साथ ही सखियों, मौसमी फल खाएं। उन फलों को चुनें सखियों जिनकी तासीर में ठंडक हो। और सखियों, जब ज्यादा गर्मी यदि आपको महसूस हो तो तुरंत ठंडा पानी यानी फ्रिज का पीने के बजाय मटके का ठंडा पानी लें और कुछ देर आराम करें। खुद भी रहें सुरक्षित और अपने परिवार का भी ध्यान रखें सखियों इस तपती गर्मी में। ज्यादा बेचैनी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सखियों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। तो सखियों, हम बता दें कि कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति नीलम जौरे को।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं अगला गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। इसमें सुनवाते हैं उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। पहले सुनते हैं मोहसिन अलवी की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

0: Nasansani. Na uttejna. Na shor din ra. Nahi ahankar. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है। बोल मजरू सुल्तानपुरी के आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है। गीत रचना मजरू सुल्तान।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानव

0: मानवता के कल्याण का रास्ता खुलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां शिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

0: भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्त

0: हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन

0: सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ही फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया है मेरे हुजूर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहा है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये पत्र आया ओम प्रकाश, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और समस्त नेमा परिवार का। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायनी की शब्द रचना संगीत नौशाद का। मेरे महबूब फिल्म के इस गाने को सुना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता सिद्धांत प्रिंस एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से पत्राया शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत साथी फिल्म से है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत है। सुनना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर रही, मेहरा जहां। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये पत्र आया है बत्ता परिवार का। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। इसी गीत की फरमाइश भेजी पटेल नगर मलूर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, राहुल देवबर्मन का संगीत, स्वर किशोर कुमार के और फिल्म है कुदरत।

ये गीत आरजू फिल्म से लिया है जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। इसे सुना चाहा है सरू चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया असमा सालिया शोएब खान पोतरा मुस्तावा खान राउफ भाई और शाहिद भाई ने। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत वक्त फिल्म से है, जिसे गाया आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया रवि ने। सुना चाहा है ग्राम धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड रुस्तम, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पतराया दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा ने।

0: आशा भोसले की आवाज़ में गाए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम छाया पाठक को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल के निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। और इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। शाम 5:33 और 6:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर और रात 10:00। छह बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग, इस विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशा में रात्रि 9:30 सुनिएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 आज हम आपको सुनाएंगे पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेजा का ध्रुपद गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है।

केंद्र है। सांझेकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र किया है। क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। ये योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची। यहाँ राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। और IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता आप सभी साथियों का कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस तपती गर्मी में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और खूब ठंडे पेय पदार्थों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यटन स्थल की सफाई और युवा दायित्व पर। इसी के साथ चर्चा होगी फिटनेस के महत्व पर। पर दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से किस्से से करते हैं। पिछले वीकेंड की ही बात है, कॉलेज के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच उस मशहूर झरने पर जाएंगे। हफ्तों की प्लानिंग हुई, ट्रिप की प्लेलिस्ट बनी और ढेरों शानदार तस्वीरों के आइडिया सोचे गए। जब वे वहां पहुंचे तो नजारा वाकई बहुत खूबसूरत था, हरी भरी वादियाँ और गिरते पानी की आवाज़। दोस्तों ने उत्साह में अपना कैमरा सेट किया, एक बेहतरीन फ्रेम बनाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जब अपना वो वीडियो प्ले करके देखा तो जानते हैं बैकग्राउंड में क्या नज़र आया? पानी की साफ लहरों के बीच तैरता हुआ एक चिप्स का खाली पैकेट और ठीक उनके पीछे पत्थरों पर फंसी हुई प्लास्टिक की कुछ खाली बोतलें। उस एक पल में उस खूबसूरत जगह का सारा सुकून और उन दोस्तों का सारा उत्साह एकदम फीका पड़ गया। साथियों, यह सिर्फ उन दोस्तों की कहानी नहीं है, यह आज हम में से लगभग हर उस युवा की कहानी है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुरा कर प्रकृति के बीच सुकून ढूंढने जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या मिलता है? हमारा ही छोड़ा हुआ कचरा। चलिए, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त है आज के इस कार्यक्रम के पहले गीत का।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से। स्वर थे मोहित चौहान के, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन था प्रीतम का। दोस्तों गीत से ठीक पहले हमने एक किस्से को साझा किया था, एक खूबसूरत झरने और वहाँ फैले हुए कचरे की दास्तां। दोस्तों हमारी जिंदगी, असाइनमेंट्स, ऑफिस की डेडलाइंस, करियर की टेंशन्स और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में कितनी व्यस्त हो गई है। इस भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। ऐसे में जब हम अपना बैग पैक करते हैं और किसी सफ़र पर निकलते हैं तो वो सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, वो हमारे मन का रीसेट बटन होता है। हम पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वो ठंडी हवा हमारे दिमाग की उलझनों को शांत कर सके। हम नदियों और झीलों के किनारे बैठते हैं, चाहे वो हमारी शहर की शांत झीलें हों, हरी भरी वादियाँ हों, सुकून भरा परिसर हो। वहाँ जाकर जो शांति मिलती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और जब हम पुराने किलों और ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं तो वो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होती, वो हमारी जड़ें हैं। वो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है। दोस्तों पर्यटन सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह हमारे लिए एक थेरेपी है, या हमें प्रकृति से, अपनी संस्कृति से और सबसे बड़ी बात खुद से जोड़ती है। जब आप एक नई जगह पर अजनबी लोगों से मिलते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ की हवा में सांस लेते हैं तो आप एक बेहतर और सुलझे हुए इंसान बनकर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसी खूबसूरत सफ़र के दौरान कई बार हम सब से अनजाने में ही सही एक छोटी सी चूक हो जाती है। हम दोस्तों के साथ होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और उसी उत्साह में कई बार हमारे हाथ से कोई खाली पैकेट या पानी की बोतल वहीं छूट जाती है। हमें से कोई भी कभी भी जानबूझकर अपनी प्रकृति या अपनी धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम सब अपनी इन जगहों से बहुत प्यार करते हैं, बस उस खुशी के पल में हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वो छोटी सी चीज़ वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। ज़रा सोचिए, वो वादियाँ, जो नदियाँ, जो ऐतिहासिक दीवारें बिना कुछ मांगे हमें इतना सुकून देती हैं, क्या वो बदले में हमसे थोड़ी सी देखभाल की उम्मीद नहीं करती? जब उसी खूबसूरत नज़ारे के बीच हमें कोई प्लास्टिक या कचरा नज़र आता है तो हम सबका मन थोड़ा उदास हो जाता है ना, क्योंकि वो जगह हमारी अपनी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा क्योंकि गीत के बाद हम जानेंगे कि कैसे हम युवा पर्यटन स्थल को साफ रखने में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में गीत जग घूमया फिल्म सुल्तान से। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। दोस्तों हम युवा बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो दुनिया का कोई भी बदलाव ला सकती है। हम जो चीज़ अपना लेते हैं वो ट्रेंड बन जाती है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक नया और बेहद खूबसूरत ट्रेंड शुरू करें, जिम्मेदार पर्यटन यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ट्रेंड। और इसके लिए हमें बहुत कुछ अलग या मुश्किल नहीं करना है, बस सफ़र के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाना है साथ मिलकर। पहला कदम, एक छोटा सा इको फ्रेंडली बैग। दोस्तों हम जब भी सफ़र पर निकलें तो अपने बैग में कपड़े या कागज़ का एक खाली बैग ज़रूर रखें। रास्ते में जो भी खाली रैपर या बोतल हो उसे हम वहाँ ना छोड़कर उस बैग में रख लें और डस्टबिन दिखने पर उसे वहाँ डाल दें। कितना आसान है ना। दूसरा कदम, लीव नो ट्रेस। यह प्रकृति का बहुत ही प्यारा नियम है। हम जहाँ भी जाएं वहाँ सिर्फ अपने पैरों के निशान और अपनी यादें, अच्छी प्यारी यादें छोड़कर आएं। हम सब ये कोशिश करें कि वो जगह हमारे आने से पहले जितनी खूबसूरत थी हमारे जाने के बाद भी वैसी ही रहे। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सहयोग। दोस्तों कई बार हमारे आसपास कोई और पर्यटक अनजाने में कचरा छोड़ रहा होता है, ऐसे में एक सहयोगी के रूप में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनसे कहना है कि आइए इसे हम सब मिलकर साफ रखते हैं, आखिर ये जगह हमारी ही तो है। यकीन मानिए प्यार और अपनेपन से की गई यह छोटी सी पहल सामने वाले का दिल जीत लेगी। दोस्तों हमारी धरोहरें और हमारी प्रकृति हमारा परिवार है, आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि अपने इस परिवार की खूबसूरती को हम यूं ही सहेज कर रखेंगे, एक टीम की तरह, एक जिम्मेदार युवा की तरह। अभी तक हमने बात की हमारे आसपास के वातावरण, हमारी खूबसूरत धरोहर और प्रकृति को सहेजने की। हमने जाना कि कैसे हम सब मिलकर बाहर की दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन साथियों इन खूबसूरत वादियों का मज़ा हम तभी ले पाएंगे जब हमारा अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम सबकी ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम विषय की, हमारी सेहत, हमारी फिटनेस की। ज़रा सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं? क्या आप दो मंजिल सीढ़ियों बिना सांस फूले चढ़ सकते हैं? क्या दिन भर काम या पढ़ाई करने के बाद भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा बचती है कि आप शाम को अपने परिवार या दोस्तों के साथ हंस बोल सकें? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप फिट हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से स्क्रीन टाइम भी इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही लगातार बैठे रहने और शारीरिक मेहनत कम होने का सीधा असर हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा है। दोस्तों आज का युवा बहुत जल्दी तनाव, एंजाइटी और थकान का शिकार हो रहा है। हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कई बार उन सपनों के लिए मेहनत करते करते अपने शरीर और अपने दिमाग को थका देते हैं। यहीं पर फिटनेस हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत फिल्म संजू से। गीतकार थे शेखर अस्तित्व और संगीत निर्देशन था विक्रम का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग का कितना गहरा कनेक्शन है? जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, चाहे वो टहलना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना हो, तो हमारा दिमाग एंडोमॉर्फिन्स नाम की रसायन छोड़ता है और हम इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अगर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है या दिन भर के काम से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आप बस 30 मिनट के लिए बाहर खुली हवा में तेज़ी से चलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सारा तनाव जैसे पसीने के साथ बह गया हो। आपका दिमाग पहले से कई ज़्यादा शांत और स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि फिटनेस सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों को ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी एक बहुत बड़ा सहारा देता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक शांत और एकाग्र मन बसता है। जब शरीर में चुस्ती होती है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि समय कहाँ से निकालें? हम सब इतने व्यस्त हैं कि लगता है फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना तो असंभव है। साथियों यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। फिटनेस को एक टास्क या बोझ की तरह मत देखें, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लीजिए। हमें रोज़ 2 घंटे जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी कहता है कि दिन भर में बस 30 से 40 मिनट की सामान्य शारीरिक गतिविधि हमें स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। तो हम अपनी सामान्य दिनचर्या में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं? आइए बहुत ही आसान और व्यवहारिक तरीकों पर बात करते हैं। दोस्तों जब भी मौका मिले लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियो व्यायाम है जिसके लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने की बजाय टहलते हुए बात करिए। पढ़ाई या काम के बीच में हर 1 घंटे के बाद उठें, शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और पानी पीकर वापस बैठें। आप अपने पसंदीदा खेल को भी चुन सकते हैं, क्योंकि फिटनेस मज़ेदार होनी चाहिए, सज़ा नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल खेल सकते हैं। और अगर आपको स्विमिंग पसंद है या साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो उसे भी अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति के बीच 30 मिनट टहलकर ज़रूर आइए, यह आपके शरीर को ही नहीं आपके मन को भी प्रफुल्लित करेगा। अंत में हम फिटनेस के उन 2 पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों जिनके बिना कोई भी फिटनेस रूटीन अधूरा है, हमारा आहार और हमारी नींद। आजकल जंक फूड और बाहर का खाना हमारी लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा बन गया है ना। हम इसे पूरी तरह से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम एक संतुलन तो बना ही सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपके दिन का ज़्यादातर खाना घर का बना हुआ हो, सादा और पौष्टिक हो। ताज़े फल, सब्जियां, दालें और भरपूर मात्रा में पानी, बस यही असली फिटनेस का राज है। पानी हमारे शरीर के लिए एक जादुई तत्व है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए, आप खुद अपने शरीर और त्वचा में गजब का बदलाव देखेंगे। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे ज़रूरी बात, पर्याप्त नींद। हम युवा अक्सर देर रात तक फ़ोन चलाते हैं या काम करते हैं और अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं। दोस्तों जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की

अच्छी और गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लें और कितना भी व्यायाम कर लें, आपका शरीर हमेशा थका हुआ ही रहेगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले अपनी स्क्रीन का प्रयोग रोक दें। दोस्तों, हम युवा इस देश का भविष्य हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल शेखर के संगीत से सजा हुआ गीत बोल हैं इरशाद कामिल की। आवाजें नूरानी सिस्टर्स और विशाल ददलानी की हैं और फिल्म का नाम है सुल्तान। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
4: डीडी डायरेक्ट
3: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
4: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
4: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
3: आज ही करें कनेक्ट
4: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हमारी बहनों को 40 से ज्यादा ई साइकिलें वितरित की गई हैं। ये साइकिल इन बहनों के जीवन में बहुत मदद करेंगी, खासकर ई साइकिल जब आज पेट्रोल और डीजल की कठिनाई का दौर है तब ई साइकिल का अपना ही महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की पहलों का जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1,87,000 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपलब्धि लाखों ग्रामीण कारीगरों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। यह योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech from the Red Fort last year had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remain crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. Dr. Jayashankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations share the responsibility towards a free and open Indo-Pacific.
2: Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability.
4: In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the U.S. will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this. In his joint press statement, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi emphasized the importance of diplomatic efforts in ensuring free and safe navigation in the Strait of Hormuz as well as bringing stability to West Asia. Australian Foreign Minister Penny Wong said Quad has announced the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership. The Quad Foreign Ministers meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for the ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. Addressing a press conference after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs K. Nagaraj Naidu said, the meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
5: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and emerging technologies, and four, humanitarian assistance and disaster response.
4: On to sports. The playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final. And that is the end of this news bulletin.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

फिल्म सिलसिला का ये गीत आपने लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद मार्केट मंत्रा।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब का ये प्यारा सा गीत। शकील बदायूनी का लिखा एक गीत था और धुन बनाई थी नौशा।

आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है कारवा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले जिस गीत को हम सुनवाने जा रहे थे और नहीं सुनवा पाए, उसी गीत को हम फिर से लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है शिकारी। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ है। फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत है और जी एस कोहली ने इसे संगीत से सजाया है। आइए सुने इस गीत को।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
4: डीडी डायरेक्ट।
3: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
4: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
4: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
3: आज ही करें कनेक्ट
4: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 870।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
3: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 मिनट पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग। जानकारी देंगे डॉक्टर अनुराग पटेल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में फिल्म संगीत का आनंद दीजिएगा 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसमें आप सुनेंगे कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिल-ए-समा। रात्रि 10 बजे हम प्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति क्षेत्रीय समाचार एकांश की होगी। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेगा पंडित उमाकांत गुंदेचा पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन, राग होगा यमन। 8:00 है हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा 8:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रागेश्वरी सोनी के गाए चंद गीत और भजन। समय रहेगा 9:15। 9:30 पर सुनेगा प्रदेश की सुर्खियों में कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन, राग होगा देवगिरी बिलावल। समय 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें की सुने। दिन में 12:00 और 2:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात्रि 8:15 पर। 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। उपेक्षित घनश्याम सिंह तोमर का लिखा यह नाटक आप सुनेगा कल रात्रि 10:00। प्रस्तुत करता होंगे जितेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग रागेश्री। समय रहेगा रात्रि 10:30। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
1: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
0: यह परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। यह परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और एसपी निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4,4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर

0: मेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
1: बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और क्यूआर कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से ढाई घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जाँच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में एनजीटी के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण, लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जाँच होगी। एक महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एमपी लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि एआई की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज, हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसीई दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जाँच की गई और धार में 1 जून को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई का एक्शन। पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज और

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे सगे भैया बहन को मनीषा बहन की राम राम। देखो भैया, जा समय कितनी गर्मी पड़ रही है भैया, अपन दिन भर खूब पानी पियत रहें अपने भैया, कम से कम 8 से 10 गिलास अपने भैया को पानी पीना चाहिए। सादा पानी पीवे के अलावा अपने भैया को नारियल पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, सत्तू है, जे अपने भैया के लाने इनको सेवन करना चाहिए। कहे के भैया खान पान में अपने भैया तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसी पानी से भरपूर फल भी खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडो पानी अपने भैया के लाने नहीं पीना चाहिए, मटका को पानी पीना चाहिए, ज़्यादा तलो भुनो खाना नहीं खाना चाहिए। काहे के भैया पचवे में जो परेशानी होत है, और भैया हल्को और ताजो भोजन करना चाहिए। अगर अपने लाने बाहर भैया जानो बहुत ज़रूरी हुए तो अपन को छाता लेके बाको छाता को उपयोग करना चाहिए। सिर और चेहरे के लाने सूती कपड़ा से ढककें बाहर निकलना चाहिए अपने लाने, और गहरे रंग के और टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, हल्के रंग के और ढीले कपड़ा पहनना चाहिए। दोपहर के समय घर में ही रहें, ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही भैया बाहर निकलें। और भैया पानी तो अपने लाने बहुत पीनो ही है, काहे के भैया धूप में रहवे के बाद चक्कर आनो, तेज सिरदर्द, पसीना आनो या उल्टी होए तो भैया तुरंत ही डॉक्टर के लाने अपने लाने दिखाना चाहिए। भैया अपने लाने अगर बहुत ज़रूरी हो बाज़ार जाबो तो दोपहर के समय में तो भैया बाज़ार से आबे के तुरंत बाद अपने लाने नहानो नहीं चाहिए। काहे के भैया तुरंत नहावे से अपनो शरीर को तापमान है वो बड़ो रहे थे तो अपनी तबीयत खराब हो सकते थे। तो भैया अपने शरीर को तापमान अगर कम हुए तब ही अपने लाने नहानो चाहिए। और अपने भैया बहन के लाने बाजार वगैरह से आबे के बाद गर्मी में ज़्यादा आबे के कारण तुरंत ही नहा लेते हैं तो भैया ऐसा ना करें, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो सकत है। तो भैया अपनो ध्यान रखें, अपने बच्चन को ध्यान रखें, अपने बुजुर्गन को ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को अपने भैया ध्यान रखें। और भैया अपन जब अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे तो भैया अपन सही से रह पाएंगे। गर्मी तो बहुत पड़ ही रही है भैया। तो देखो जल अपन बात करते हैं जल स्रोतन को, कि जल स्रोत दूषित होवे से अपन कैसे बचा सकते हैं। तो भैया जल स्रोतन को दूषित होवे से बचावे के लाने सबसे प्रभावी कदम जो है कि कचरा को सही निपटान करें। और नदियां हैं, तालाब हैं, बिन में कपड़ा धोनो है, नहानो है, पशुओं को नहलावो है, वहाँ पर रोक लगना चाहिए। जल स्रोतन को बचावे के लाने अपने लाने कछु जरूरी उपाय करना चाहिए, जैसे घरेलू कचरा है बाकी लाने पॉलीथीन है, प्लास्टिक और सड़वे ना सड़वे वाले अपने जो कचरा है बिनको सीधे जल में पानी में नहीं फेंकना चाहिए। घर की नालियन में कठोर रसायन जैसे पेंट है बिन के लाने, जैसे एक्सपायर दवाएं हो जाते हैं बिन के लाने अपने लाने नालियन में नहीं फेंकना चाहिए। और जो सब्जी धोवे के बाद जो पानी बचत है बाको उपयोग अपने लाने बगीचा में अपने जो पेड़ पौधा लगे हुए थे बिन में करना चाहिए। और भैया कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी और जहरीले पानी को नदियन में ना जान देवे, बासे पहले शोध अपने लाने शोध करना चाहिए कि भैया उद्योगन को अपने लाने कचरे के उचित निपटान के लाने सख्त पर्यावरणीय नियमों को पालन करना चाहिए। खेतन में रासायनिक खाद और कीटनाशक को उपयोग कम करें, जौन से बारिश को पानी इन्हें बहाकें जल स्रोतन तक ना ले जाए। खेती के लाने जैव विधियन को अपने लाने उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को चयन करें। जल स्रोतन के किनारे तालाब नदियाँ के किनारे भैया साबुन से नहानो, बर्तन मांजनो या वाहनों को धोनो पूरी तरह से बंद करना चाहिए। लोगों से जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को भैया संरक्षण के महत्व के लाने बिनके लाने जागरूक करना चाहिए। और अपने जो स्थानीय क्षेत्र के पेयजल स्रोत हैं बिनके लाने स्वच्छता सुनिश्चित करना चाहिए कि बाकी लाने स्थानीय स्तर पर निगरानी करें। छात्रों और आम लोगों को जल प्रदूषण को नियंत्रण करवे के आसान और प्रभावी उपाय जानवे के लाने प्रेरित करना चाहिए। भैया हम आप लोगों को दोबारा फिर से कहते हैं कि पानी को अपने भैया पियत रहें। काहे के भैया जा भीषण गर्मी में मौसम में अपने बच्चन को धूप में बाहर ना घूमन देवें, काहे के लपट लगवे से अपने भैया बच्चन को ही तबीयत खराब हो जाते है। अगर भैया लपट लग जाते है तो भैया अपने लाने मुलक परेशानियों को सामना करना पड़ता है।
और अपने भैया बाहर जात समय पेट भर के भोजन करके निकलें और पानी पी के निकलें। और भैया अपने जौन भैया ने पशु पाल रखे हैं वे भी अपने पशुओं को भैया ध्यान रखें, बिना छायादार स्थान पे बांध के रखें, काहे के बिनके लाने भी गर्मी लगत है। अपने पशुओं को दिन में 3-4 बेर पानी पिलात रहें और बिनके लाने मिट्टी के बर्तन में या सीमेंट की टंकी को इस्तेमाल अपने लाने पानी के लाने करना चाहिए। काहे के भैया पशुओं को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीधी धूप और गर्म हवाओं से बचाना चाहिए। पशुओं को छायादार पेड़ के नीचे या हवादार छप्पर में रखें। काहे के भैया टीन सेट के ऊपर पुआल या घास डाल के तापमान कम करो जा सकत है। तो भैया दुधारू पशुओं के लाने शेड में या पंखा या कूलर या खसकी टट्टियां लगा के और समय समय पे पानी को छिड़काव करत रहें। भैया धूप के समय में पशुओं को खाना ना देवें, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी या शाम को ठंडे समय में चारो खिलाएं। गर्मी में पशुओं की भूख कम हो जाते है, जैसे कहा है भैया उन्हें आसानी से पचवे वालो हरो चारो खिलाना चाहिए। गर्मी शुरू होवे से पहले ही अपने पशुओं को भैया टीकाकरण जरूर करवा ले में। यदि पशु हाँफ रहो हो या मुँह से लार टपका रहो हो तो या सुस्त हो तो भैया जाए हीट स्ट्रोक या लू मानो जात है। ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की सार में साफ सफाई रखें और शाम के समय नीम की पत्तियों को धुआं करें ताकि मच्छर मक्खियों से अपने पशु बचे रहें। जैसे भैया अपने पशु स्वस्थ रहेंगे और अपने भैया जो हैं बिनको काम अच्छे से चलत रहेगा। और भैया यदि हम अपनी फसलन पे जाको छिड़काव करते हैं और आप देखा थे कि गोभी के जो डायमंड बैक माथ वाले कीड़ा होते हैं बाकी लाने अपन जनीम की पत्तियों को छिड़काव करते हैं तो वासे का होते हैं माहू है हरे मच्छर हैं बिन पर नियंत्रण हो जाते हैं। और हम चाहें तो भैया नीम की पत्तियों को उपयोग अनाज भंडारण में भी कर सकते हैं। और जाको उपयोग करवे के लाने भैया किसान भैयान को 100 किलो अनाज में 2, 4, 8 या 10 किलो सूखी नीम की पत्तियों को उपयोग करना चाहिए। और भैया कैसे नीम की पत्तियों को उपयोग करें, भैया 1 क्विंटल की कोठी की सतह पर कपड़े की 2 परत के बीच में 2 से 4 किलो सूखी नीम की पत्तियां रखें, ऊपर 100 किलो अनाज अपने लाने डाल दें, फिर कोठी के लाने बाकी ऊपरी सतह से कपड़े की 2 सतह के बीच में 2 से 4 किलो सूखी नीम की पत्तियां रखें और वह कोठी के लाने एयर टाइट करके बाकी लाने बंद कर दें। तो भैया जो भी अनाज को भंडारण हम करते हैं तो हमारे अनाज पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। भैया हम चाहें तो जो नीम की पत्तियां होते हैं बाको उपयोग भी हम कीट नियंत्रण में कर सकते हैं। 1 किलो नीम की निमोली के लाने रात भर भिगो दें और दूसरे दिन सवेरे जाके लाने पीस के पानी में जाको अर्क छान लें और जाके बाद 100 लीटर पानी में मिला के यदि हम फसल पे जाको छिड़काव करते हैं तो भैया जैसे फसल में लगे वाले चित्तीदार कीड़ा है, इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है, इन कीड़न पे नियंत्रण होते है और साथ ही जो रसचूसक कीड़ा है बिन पे भी नियंत्रण होते है। तो भैया अपने जो भैया हैं वे जातरा से अगर कीट नियंत्रण करेंगे तो भैया वे आसानी से अपने फसल पे बाको छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। और भैया देखो अपन जानते हैं कि अपन देश कृषि

धान देश है, जहाँ की का है ज्यादातर आबादी गांव में बसी है और भैया खेती करत है। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी सो ही कही जात है। और भैया देखो अपने किसान भैया बहने आत्मनिर्भर बनवो सीखे, कहे के भैया पहले की बात करें तो एक एक किसान भैया बहनन के पास मुलक बीघा जमीन होता थी, बड़े बड़े रकबा में खेती होता थी। और भैया परिवर्तन ही प्रकृति को नियम सोई होते हैं। सो भैया सिंगे खेती करनो बदल गाओ, खेती के तरीका बदल गए और भैया इनको क्षेत्र भी बदल गाओ और दूर दूर तक नो हरे भरे खेत लहलाहान लगे और अपने भैया खेती करन लगे। तो भैया जा से कहा है अपने भैया आत्मनिर्भर बनबो सीखे। और भैया देखो अब चौपाल कार्यक्रम से विदा लेवे को समय हो रहा है, तो भैया अपनी बहन मनीषा के लाने दो विदा। राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सगे भैया बहन खा मंगरू भैया की और
4: मनीषा बहन की राम राम
0: राम राम। किसान भैया, और देखो अपन देख रहे हैं कि इस समय चल रहा है गर्मी का मौसम,
4: और का भैया
0: वो गर्मी भी बिलात गर्मी पड़ रही है, इस समय पड़ रहे नौ तपा है ना,
4: और का
0: तो इस समय में कहा है कि भाई किसान भैया के लाना जो है जिस समय बिलात अच्छो है, कैसे कि भाई खेत की अपने दशा सुधारने हैं, मतलब खेतन में कोई भी काम अगर करने हैं तो जा समय बिलात अच्छो समय चल रहा है,
4: और कभी है जा समय कर सकते हैं अपने
0: तो
4: भैया।
0: अपन किसान भैया से वो जो चाहते हैं कि जिन भैया ने जैसे भाई खेतन की जुताई नहीं करी है, भी भैया खेत की जुताई कर लें, गहरी जुताई इनके लाने करने हैं, भी भैया भी गहरी जुताई कर लें, और गहरी जुताई करवे के काहे के बिलात फायदा है ऐसी गर्मी के मौसम में। एक तो जग है जी नीचे की माटी ऊपर पलट जाते हैं, दूसरी चीज उनमें जो फसल को हानि पहुंचाए वाले कीट रोग रहते हैं वो पूरी तरह से गर्मी में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात जगह है कि जी मैं कहूँ जेठ दोंगरा अगर पड़ गए, अच्छे पानी पड़ गए तो बात जो है पूरा पानी खेत को पानी खेत में ही रहो, खेत के बाहर नहीं जाओ,
4: मट्टी भुरभुरी हो जाती
0: है। हाँ, आगे आगे बारी फसल अपनी जो है बिलात
4: अच्छी होगी।
0: तो एक तो काम अपने लाना जी कर सकते हैं, दूसरा काम है अपनों का है कि मेड़बंदी को काम है ना, तो किसान भाई इनके लाना मेड़बंदी को काम सुई करना चाहिए, नहीं तो कहा है कि अपन देखो खेत और मेड़ एक से रहते हैं,
4: और कभी
0: और जब कहूँ फसल में पानी देते हैं या वैसे पानी पड़ जाते हैं तो अपन देखते हैं कि खेत की माटी निकल के पूरी खेत के बाहर गलियारे में पहुंच जाते हैं।
4: और
0: तो बात से कहा है कि भाई भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाते हैं जिससे फसल की पैदावार कम रहे थे,
4: और
0: तो अपन चाहिए कि खेत से तनक ऊंची अपने लाना जो है मेड़ बनाना चाहिए है ना। बाकी फायदे भी यही है कि खेत को पानी पूरे खेत में रहते हैं, मेड़ पर घास कूर हो गया थे वो अपने पशुओं के काम में आ जाते हैं,
4: और का
0: और तीसरा काम इस समय कर सकते हैं भैया गोबर की खाद पर खेतन में डाल
4: सकते हैं ना,
0: तो जो काम भी अपन लाने गर्मी में अच्छा हो जाता है, अच्छे से मिल जाते हैं, बढ़िया मुरमुरी हो जाता है माटी है ना,
4: और
0: तो जो काम को अपन कर लेना चाहिए। और भैया देखो अपन ने सबसे अच्छी बात अगर अपने अच्छी पैदावार लेने हैं जे काम के संगे संगे अपने चाहिए फसल चक्र को जरूर अपनाए।
4: और कभी और
0: फसल चक्र में यह सुबह जैसे अपन ने एक खेत में पिछली बार सोयाबीन करो तो अब के लिए अपन मूंगफली कर लें, मक्का

0: करी मक्का वाले खेत में अपन मूंगफली कर लें, सोयाबीन कर लें, मतलब कहने को मतलब जो है कि अदल बदल के जो है अपन है खेती करना है। जी नहीं कि अपन ने जा खेत में आपके लिए मक्का करी है तो आपके लिए जाए फिर दोबारा मक्का कर दो
1: और का भैया
0: तो, या मूंगफली करी तो मूंगफली कर दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन ने कहा है अदल बदल के खेती करेंगे तो वैसे कहा है कि पैदावार अपनी जो है बिलात अच्छी मिलेगी है ना, भूमि की उर्वरा शक्ति बनेगी, तो जो अपने लाने करना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि देखो अपन अब आगे बारी फसल है तो उसकी तैयारी अपने अब से कर लें कि कौन से खेत में अपने कौन सी फसल करने हैं
1: और का भैया
0: है ना, तो जो अपन पहले से तय कर लें वह बीज अब खाद लेकर रख लें अपन
1: और
0: जहाँ में सबसे अच्छी बात जो है कि अपन कोई भी फसल चाहे रबी की फसल हुए या खरीफ की हुए तो बाकी पहले अपने लाने चाहिए कि अपन फसल को बीमा जरूर करा लें।
1: सही कह रहे भैया आप,
0: फसल को बीमा करावे से जा होत के अपन देखत कहूँ प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं जो रोग के कारण कीट के कारण प्राकृतिक ओले बारिश के कारण से अगर फसल भाई नष्ट हो जाते हैं तो बाकी भरपाई जो है पाए किसान भैया के लाने सरकार कर देते
1: बीमा के
0: है ना,
1: और
0: वहाँ में बिलात नुकसान नहीं होता है। और अगर अपने बीमा ना करो और जैसे भाई फसल खराब हो गई तो वह पूरा नुकसान पूरा अपाओ ही रहते हैं
1: और
0: अपने लाने कोई भरपाई नहीं होता है। तो अपने लाने चाहिए कि अपन जो है ये काम को जरूर कर लें। अब जैसे आगे आई खरीफ की फसल आ रही है तो खरीफ की फसल में जो फसलन को बीमा होते है अपन आप ऐसे जानकारी ले लें
1: और कभी
0: जाकर भी फसल बीमा कैसे होगो कहाँ जाना पड़ेगा कितने प्रीमियम में आगी कौन सी फसल को अपने लाने बीमा कराने हैं तो जो अपन पहले से तय कर लें।
1: सही कह रहे भैया आप और का।
0: तो जो काम होगा किसान भैया वैसे कर लेंगे तो निश्चित है किसान भैया अपने आगे आगे वाली फसल में परेशानी नहीं होगी
1: और
0: का। तो जानकारी अभी अपन से ले सकते हैं, अपने पास समय है, बीज भी खाद भी अब ऐसे लेकर धर लें है ना,
1: और
0: दवा भी लेकर धर दें। अब कहा है कि अपने लाने एक महीना बीच में है, इसके बाद तो बोनी शुरू हो जाएगी।
1: सही
0: तो एक महीना में जो काम को अपन
1: पहले करके
0: रख लें ना,
1: और भैया
0: बीमा की भी अपन तैयारी कर लें, जब बीमा हो तो अपन तुरंत जो है बीमा करा सकते हैं।
1: सही
0: जाते कहा भरपाई हो जाता भाई किसान के लाने ये में नुकसान नहीं होगा
1: और कभी है। सही कह रहे हैं आप। और देखो भैया हम अपने भैया के लाने हर समय अच्छी अच्छी जानकारी लाते हैं, तो भैया आज किसान वाणी गांव के माध्यम से अपने भैया के लाने जो लाए हैं जानकारी ग्राम अमतला विकासखंड पोहरी जिला शिवपुरी के स्थल रिकॉर्डिंग है, जाके असायनी सहयोग हैं मोहन सिंह यादव और जाके प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल।
0: तो भैया सुना थे अपन जो स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित जी कार्यक्रम किसान भैया देखो अपन किसान भैया के लाने समय समय पे बिला तरह की जानकारी देते हैं और जहाँ में अपन किसान भैया के लाने जो है खेती किसानी के बारे में उनके स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा के बारे में बिला तरह की जानकारी अपन किसान भैया के लाने आकाशवाणी के माध्यम से देते हैं और दबाव भी रहते हैं और खेती किसानी की किसान करते हैं और खेती किसानी में अपन कौन तरीका से खेती कर रहे हैं, उन्नत बीज कृषि यंत्रण को उपयोग कैसे कर रहे हैं, जी को अधिक पैदावार कैसे ले रहे हैं, जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, तो सभी के बारे में अपन का करते हैं गांव-गांव जाके अपन जो है खेती करने वाले किसान भैया के अनुभव लेते हैं और उनसे जानते हैं कि वे कौन तरीका से खेती कर रहे हैं और उनको पैदावार जो है लगातार कैसे बढ़त चली जा रही है, तो जो सभी जानकारी के क्रम में सो किसान भैया आज अपन आ गए हैं पोरी विकासखंड जिला शिवपुरी के ग्राम अमतला में और अमतला में पे बिलात किसान भैया बैठे हैं तो इनसे तनिक चर्चा देर से करेंगे। इससे पहले सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम।
2: राम राम।
0: सो किसान भैया देखो अपन जो है जो भैया के पास चला थे जो भैया हैं खेती करते हैं और खेती के संगे जो है इन पशुपालन इनके आधुनिक कृषि यंत्र इनके पास हैं और बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं, तो भैया आप सबसे पहला नाम बताओ।
2: मेरा नाम गुरलाल सिंह।
0: गुलाल जी अपन जो उन खेती कर रहे हैं तो खेती में अपन कौन कौन सी खेती जा समय में ले रहे हैं?
2: अभी गेहूं चना सरसों।
0: तो जैसे अपन देख रहे हैं कि आपके पास खेती की कितनी जमीन है?
2: अपने पास 80 बीघा जमीन है।
0: 80 बीघा जमीन अपने पास है और अपन जब भी देख रहे हैं कि कृषि यंत्र आपके पास बिलात हैं तो अपने पास खेती के कौन कौन से यंत्र हैं?
2: अपने पास टोटली सभी कृषि यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली थ्रेसर हैरो कल्टीवेटर रेजबेड प्लांटर जो नई तकनीक के काम आता है अच्छी खेती के लिए रोटावेटर रिवर्सिबल प्लाऊ ये सभी यंत्र हैं।
0: खेत जी यंत्रण के संग अपन जब भी देख रहे हैं कि आपके जो है ही में जो अपन देख रहे हैं जो फलदार पेड़ भी लगे हुए हैं तो जो अपन ने फलदार पेड़ लगावे को अपना उद्देश्य का है?
2: फलदार पेड़ों से एक तो हरियाली अच्छा लगता है और बाकायदा बच्चों के लिए फल भी मिलते हैं खाने के लिए। अभी मेरे पास आड़ू का पेड़ है जो लगभग अपने इधर तो कहीं भी नहीं मिलता पंजाब में होता है, उसमें अभी थोड़े 2-3 महीने बाद फल आना चालू होता है, हर मतलब साल में एक बार फल आता है उसमें। आड़ू है जामफल है सैतूत है अनार है और आंवला भी है नींबू ये सभी पेड़ लगे हुए हैं आप जैसे देख रहे हो।
0: तो खेती के संग किसान भैया के लाने फलदार पेड़ लगाना चाहिए?
2: बिल्कुल
0: तो जी को फायदा अपन के।

0: खेती कर रहे हैं, फलदार पेड़ भी लगा रखे हैं, पर्याप्त कृषि यंत्र भी हैं, पशुपालन किराना पशु भी हैं अपने पास। तो जैसे अपन खेती की बात करें तो खेती में जैसे आपने गेहूँ की खेती करी तो गेहूँ में अपन ने कौन सी किस्म करी अब तक की जो तैयारी जैसे जैसे करी बताओ किसान भैया के नाने बताओ।
1: जैसे कम पानी वाली फसल के बाद अधिक पानी वाली, और जो मेरा धान का रकबा था उसमें मैंने चने की खेती अधिक पानी से अब कम पानी वाली, तो उससे क्या है कि पानी का संतुलन बना रहता है। और खेतों में मैंने वो कंप्यूटर चाटी बोलते हैं जिसको, वो मैंने पूरे में चलवा के खेत प्लान करके उस हिसाब से करते हैं जिससे पानी भी बचत होती है। और गेहूं में बीज उपचार के बाद टोटली जिंक सल्फर डीएपी और भी जो चीज़ें उसमें ज़रूरत थी वो सभी डाल के 3 बार जुताई करके एक बार हैरों से, 2 बार कल्टीवेटर से, फिर रोटावेटर चलाया, रोटावेटर के बाद फिर उसमें बोनी की।
0: अब जैसे चना है तो चना में अपन ने जो है चना की कौन सी किस्म अपन ने ली है?
1: चना में अपने पास 335 है और एक मौसमी है,
0: दो वैरायटी अपन ने ली,
1: दो वैरायटी है। और गेहूं में 322 और 1544।
0: तो जैसे अपन ने चना की बात करें तो चना में जैसे अपन ने बोनी जब कर रहे थे तो बोनी जब अपन कर रहे थे तो बीज को बीज उपचार करके कर रहे थे कि अपन ऐसे ही मतलब?
1: नहीं, बीज उपचार करके करते हैं।
0: तो जहाँ में जब बीज उपचार होगा, बीज उपचार के बाद जैसे अंकुरण परीक्षण क्षमता है वह अपन करते हैं कि नहीं करते हैं, और बीज की मात्रा अपन 1 बीघा में अपन चना की गेहूँ की कितने कितने ले रहे हैं?
1: गेहूँ की हम 35 और 40 किलो पर बीया डालते हैं, और चने में 15 से लेकर 18 किलो पर बीया डालते हैं।
0: अच्छा जी, मैं अपन जो है खाद की बात करें तो जैसे खाद किसान भैया डाल रहे हैं तो गेहूं में जैसे बात करें तो गेहूं में जैसे खाद और बीज मिला के डाल रहे हैं कि दोनों अलग अलग तरीका?
1: नहीं, अलग अलग। अपनी सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है जिसमें 2 बॉक्स रहते हैं, एक में खाद अलग और बीज अलग, उससे वो नहीं करते हैं।
0: और अपने किसान भैया आज अपने क्षेत्र में ज़्यादातर हमने देखो कि बीज और खाद मिला के और एक ही पेटी वाली जो सीडल है उसे बोनी कराते हैं, और आप दो पेटी वाली से कराते हैं, तो जहाँ में सही तरीका कौन सा है और कौन से तरीका से जो है अपने बोनी करना चाहिए?
1: देखो, ये वैज्ञानिक तरीका यही है कि अलग अलग बोया जाए जिससे खाद नीचे चली जाए और बीज थोड़ा ऊपर रह जाता है। उससे क्या है, बीज का अंकुरण पूरा होता है, बीज सड़ता नहीं है, जो खाद के संपर्क में बीज आता है वो गल जाता है।
0: लेकिन अपने बिलात किसान भैया अपने क्षेत्र में जो करते हैं मिला के तो उनको तरीका गलत है?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो उसमें का नुकसान उनके लाने होते हैं?
1: उसमें बीज का नुकसान होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीज खराब हो जाता है खाद के, उससे और भी काफी नुकसान होते हैं।
0: लेकिन सही तरीका यही है कि अपन दो पेटी बारी से जो है बोनी करना चाहिए जी, मैं पहले खाद गिरा थे फिर ऊपर से बीज।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अब जैसे अपन गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में अपन पानी अपन कितने दिए थे?
1: गेहूं में पानी हमारे क्षेत्र में क्या है कि पानी की कमी है, जैसी उपलब्धता रहती है उस हिसाब से अगर 4 पानी कम से कम लगे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो 2 और 3 पानी भी लगाते हैं।
0: अवस्था होते हैं उनकी कौन कौन सी ऐसी अवस्था है जिन समय पर अपने पानी दे वो बहुत ही जरूरी है?
1: जैसे किल्ले निकलते हैं उसमें, जिस समय बालियां आती है, दाना में दूध की अवस्था रहती है, दाना भरता है इस समय।
0: तो जब तो भाई पानी की बात, और जैसे उनमें अपन खाद की अगर बात करें तो जैसे यूरिया खाद भैया दिए थे तो खाद देवे को तरीका अपनों का रहे थे?
1: खाद का तरीका पहले पानी पे आधा खाद दे के उसको थोड़े दिन बाद फिर मतलब 2 बार देते हैं, एकदम पूरा खाद नहीं फेंकते।
0: नहीं, तरीका है जैसे अपन पहले छिड़क दाओ फिर पानी दिए थे, कछु लोग पानी पहले दिए थे फिर छिड़क दिए थे, तो उनको तरीका दोनों में से कौन सा सही है, आप कौन तरीका दे खाद दिए तो भाई फसल में?
1: दोनों तरीके से ही देते हैं।
0: गेहूं में अपन जो है प्रति बीघा को अपन पैदावार कितने रहे थे अपनी?
1: सर अपने यहाँ पे 322 का हमें रिजल्ट अच्छा मिला जो कि बीज की किस्म है, उसमें हमारा 12-13 क्विंटल पर भी आया है। और धान वाले खेतों में थोड़ा गेहूं कम निकलती है।
0: और अपन लागत की अगर बात करें तो 1 बीघा की लागत अनुमानित लगभग कितने लग जाते?
1: 3-4 हजार रुपए पर बीघा।
0: पैदावार की बात करें तो 12 क्विंटल प्रति बीघा अपनी हो जाते हैं, फिर अपने पास भूसा है वो अपने पशुओं के काम में आ जाते हैं। और जी के संग अपन जैसे पशु का पालन कर रहे हैं तो पशुओं में अपने पास कौन कौन से पशु हैं?
1: पशु अपने पास नीली रावी है और मुर्रा है। पशु अच्छी नस्ल का ही रखने में फायदा है, और जो अच्छी किस्म का पशु होता है वो उत्पादन ज्यादा देता है, दूध भी ज्यादा देता है।
0: रेवे की इस समय में क्या व्यवस्था अपन ने कर रखी है?
1: मेरे पास पक्का हॉल बना है जैसे आप देख रहे हो, ठंड से बचाव के लिए, बरसात में भी गर्मी में भी अंदर बनते हैं, जब ठंड के समय में धूप होती है तो उन्हें बाहर निकालते हैं।
0: साफ सफाई की अपनी कैसी का व्यवस्था उम्र रहते?
1: साफ सफाई दोनों टाइम होती है।
0: अपनी दुधारू पशुओं के लाने कैसी का व्यवस्था रहता है? अपन कौन कौन तरीका से उन्हें कौन कौन सी चीजें कब कब अपन खवाते हैं?
1: इसमें अभी इनको हरा चारे में बरसीन देते हैं और गेहूं का भूसा, पीना और बाजरा दलिया वगैरह बना के।
0: और पशुओं में जैसे मान के चलो कोई बीमारी अगर हो जाए तो उनमें जो है

0: टीकाकरण होते है, एक बरसात में, एक बरसात से पहले, एक सर्दी इनके पहले, वो टीकाकरण अपन करवाओ थे?
1: बिल्कुल सर।
0: अच्छा, उन जिन से अपने लाने जो दूध को उत्पादन है लगभग कितने हो जाते हैं?
1: अपने यहाँ पे अभी जैसे 3 भैंसे दे रही हैं तो 20 किलो के समथिंग दूध हो रहा है।
0: तो जाको अपन उपयोग
1: कुछ घर पे लग जाता है, जो बचता है वो दे देते हैं,
0: तो बस अपन नकद आमदनी मिल जाते है। और जैसे अपन बात करें गोबर की, तो जो पशुओं से जो गोबर अपन लेना मिला थे वह अपन का उपयोग कर रहे थे,
1: उसको खाद के लिए उपयोग करते हैं खेत में अपने।
0: तो जैसे अपन गोबर की खाद को उपयोग कर रहे हैं और जो सरकारी खाद को अपन जो उपयोग कर रहे हैं, तो उसे अपने लाने सरकारी खाद में फायदा है कि गोबर की खाद अपन खेत में डाल रहे हैं तो उसे ज्यादा फायदा है?
1: गोबर की खाद में बहुत फायदा है, तो पैसे की बचत होती है, और दूसरी बात क्या है कि रासायनिक खादों से बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, उनसे भी बहुत बचाव होता है। अब कुछ रकबे में हम गोबर की खाद डाल के उससे उपज लेते हैं। वो
0: किसान भैया के लाने जो काम को करना चाहिए, किसान भैया के लाने जो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
1: बिल्कुल करना चाहिए।
0: तो ये भी खेती पे ध्यान देना चाहिए। आपने जो है भाई किसान भैया के लाने बिरात अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपन चला चला आ गए हैं जो भैया के खेत पे, तो अपन सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम जितेंद्र सिंह है।
0: अपन ने जो है जो चना की जो तैयारी खेत की कैसे करी अपने भैया के लाने, बिल्कुल शुरू से धीरे धीरे आप बताओ।
2: तैयारी अपन ने पहले तो उसकी जुताई की है 3 बार अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको पटेला लगा के पूरा तैयार कर लिया। डीएपी डालने के बाद अब बुवाई होती है उसकी। तो बीज अपने यहाँ जो अपनी जमीन को शूट करता है वो 315 चनी है, बाकी वो अपन पहले मार्केट से लाए थे पिछले साल, इस बार अपन ने घर ही रखा हुआ था, वो बीज घर से ही डाला है।
0: तो अपन ने बीज ले लो, बीज के बाद फिर अपन ने जैसे बोनी करते हैं, तो बोनी करे समय में अपन बीज को बीज उपचार कराते हैं, अंकुरण परीक्षण क्षमता जांचते हैं कि नहीं?
2: नहीं, वो उपचार भी करते हैं और अंकुरण क्षमता भी देखते हैं उसकी, बाकी उसको कीड़े से भी बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि घर पे जो बीज रखते हैं उसको अपन कुछ दवाई लगा के या किसी तरीके से उसको ऐसा रखोगे वो तो बरसात के समय वो सर्द ना जाए, और दूसरा वो कीड़ा ना खाए उसके डंक को जो उगने वाली उसकी प्रक्रिया रहती है।
0: तो बीज के अंकुरण परीक्षण क्षमता अपन कैसे जांच करते हैं?
2: वो अंकुरण अपन थोड़ी मिट्टी लेके उसमें उसको बीज गिन के डाल देते हैं, जैसे अपन ने 100 बीजा डाला तो उसमें से 90 या 95 या 85 के लगभग जो बीज उगता है वो अपने लिए ठीक है, बोने के लिए कि हाँ इसका अपना 15% तो नुकसान होता ही है बीज में, कुछ रह भी जाते हैं, कुछ गहरे भी हो जाते हैं बीज में, या कुछ सूखे में रह गया तो वो खराब हो जाता है।
0: अब जाके बात आते हैं भाई बोनी की और बीज की मात्रा की, तो अपन बीज की मात्रा अपन जो है एक बीघा में कितने
2: के लिए? अपने यहाँ 315 चनी का लगभग 25 किलो के समथिंग चनी जो है बुवाई की जाती है।
0: तो अपन बोनी को तरीका है,
2: अपन यहाँ पे सीड्रिल से बुवाई करते हैं, इसकी जो छिटा जो करते हैं उसमें बीज कम उगता है, क्या कुछ दाने ऊपर रह जाते हैं वो या तो चिड़ियाँ चुग जाती हैं या फिर वो जो नमी कम मिलती है उनको तो उससे वो खराब भी हो जाता है।
0: तो जाको तरीका सही कौन सा है बोनी को?
2: सही तरीका सीड्रिल से अच्छी तरीके से उसकी गहराई लेके उसको बोया जाए तो वो बीज सारे सही तरीके से उगते हैं।
0: तो बोनी के बाद जो है कटाई तक अपन वहाँ में कौन कौन सी देखभाल और कौन तरीका से करते हैं?
2: पहली देखभाल तो उसका उगने का देखा जाता है कि उसकी जड़ों में कोई कीड़ा ना लग जाए, अगर लगता है या वो सूखता है उसके लिए फिर दवाइयाँ आती हैं मार्केट, वो दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी अगर सूखता है तो। बाकी उसमें पानी है जो 20-25 दिन बाद उसको एक पानी चाहिए, वो भी चलेगा पानी भी। वो बाकी फूल पे आने के बाद उसे एक तो इल्लियों से बचाया जाए कि फूल से पहले जो इल्लियाँ आती हैं वो नुकसान ना करें, अगर पहले इल्लियाँ आए तो वो फूल खा जाएंगी तो अपना उसमें नुकसान होगा, वो इल्लियों की स्प्रे डाल दो उसमें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं।
0: चना की जो चुटाई है वो चुटाई भैया के लाने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
2: वैसे तो जरूरी है, चुटाई होना चाहिए उसकी, उससे क्या है पाले से बचने के लिए एक अच्छा रहता है कि चुटाई हो जाती है तो फूल जल्दी नहीं आते।
0: तो चना में अपन पानी कौन कौन सी अवस्था में और कब कब देना चाहिए?
2: वैसे तो एक पानी हमारी जमीन जो है काली मिट्टी यहाँ पे, इसमें तो एक ही पानी पर्याप्त है, वो 25 दिन के लगभग लग जाता है, उसे 25 से 30 दिन तक भी दे सकते हैं।
0: चना की अपन जैसे बात करें एक बीघा की लागत की, तो अपने पास जो है अपने एक बीघा में कितने लागत लग जाते हैं?
2: 8-7 हज़ार रुपये लगभग लागत आ ही जाती है।
0: फिर अपन बात करें पैदावार की, तो पैदावार में अपन ने लाने कितने मिल जाते हैं एक बीघा से?
2: एक बीघा से जैसे कि 3-4 क्विंटल तक निकलता है, 5 भी हो जाता है।
0: तो कहने का मतलब जो है कि अपने चना की खेती करो फायदेमंद है?
2: हाँ फायदेमंद है।
0: अच्छा, जैसे अपन जो खेती रासायनिक खाद और उर्वरक से जो खेती कर रहे हैं वो खेती और जैसे अपन जैविक विधि में जैसे गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है और बासी अपन अगर खेती करें तो बाद में दोनों में कौन सी खेती सबसे अच्छी मानी जाती है?
2: ये तो गोबर की खाद डालने से अपने को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक तो जो अपने शरीर को बीमारियां आज ग्रसित करती जा रही हैं उससे बचाव होगा। जो दवाइयां अंग्रेजी डाल रहे हैं वो नुकसानदायक ही हैं भैया, और हम सब जानते ही हैं।
0: तो कहने का मतलब जो है कि भैया निकल आना चाहिए, खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, रासायनिक खाद को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, है ना?
2: हाँ, रासायनिक तो छोड़ना चाहिए।
0: तो किसान भैया आपने जो है किसान भैया निकल आने बिलात अच्छी जानकारी दी, के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भैया देखो अपन चला चला आ गए हैं जो इनके खेत पे, और खेत के बगल में देख रहे हैं इनकी बहुत ही अच्छे जो है छपरा बने हुए हैं, और बेरिया को पेड़ है, और ये सरसों जैसी इन जो है पशुओं के लाने चारों बना रखा है, बरसीम भी खड़ी हुई है, तो इनकी जो है बिलात अच्छी व्यवस्था है। तो सबसे पहले अपन भैया के पास जाना थे नाम, तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
3: बदन सिंह
0: भैया। अपन जो है पशुपालन करते हैं।
3: हाँ जी।
0: वो पशुपालन में अपने पास जो है कितने पशु हैं?
3: हमारे पास अब 3 गईया हैं, 4-5 भैंसे हैं।
0: तो इनकी अपन जो है देखभाल अपन कैसे करते हैं?
3: सब देखो आप देख ही रहे हो, चारा खड़ा है, भूस के कूप लगे हैं, इधर भी लगे हैं, भूस डालते हैं, चारा कटवा के लड़वा के कुटी उनकी देखभाल करते हैं, दूध देती हैं।
0: तो पशुओं की जो रहवे की व्यवस्था है वो अपन ने कैसी का कर रखी है?
3: अभी तो साहब हम थोड़े ही 2-3 साल हुए हैं, पहले गांव में रहते थे डेरा पे, अब यहाँ आ गए, हम व्यवस्था कर रहे हैं इनकी, करेंगे
0: अभी भी।
3: देखो बॉडी हो रही पूरी,
0: अभी अपन देख रहे हैं इनकी व्यवस्था जो है। तो छपरे में इनको
3: छपरे बांधते हैं,
0: और उनके लाने जो है रात में उजेरे की वहाँ में व्यवस्था,
3: बल्ब लगे
0: हुए हैं, और उनकी जो है सारे जो सार है उनकी पशु उनकी उनकी साफ सफाई की कैसी का व्यवस्था?
3: साफ सफाई सब पूरा गोबर मोबर सब निकाल के साफ कर दे।
0: तो साफ सफाई करवे से अपने का फायदा होते हैं?
3: अगर गीला होगा नहीं ये तो परेशानी आएगी नहीं, अगर साफ होगा तो सूख जाएगा हवा का के, मवेशी आराम से बैठेगा, शाम को सूखा डालना पड़ता है, बस जैसे खराब बस हो गया उसे नीचे डाल देते हैं, सूखे में बैठ जाता है छुपा।
0: तो जैसे पशुओं में टीकाकरण जैसे होते हैं बरसात से पहले सर्दियों से पहले वो अपन कराओ थे?
3: हाँ जी, वो करवाते हैं, डॉक्टर आते हैं।
0: तो वहाँ से पहले आने का फायदा होता
3: है? वहाँ से ये गलगोटू वगैरह ये बीमारियाँ नहीं आती,
0: जो बचाव हो जाता है ना। अच्छा, जैसे दुधारू पशु हैं तो उनके अपन जो खावे पीवे की व्यवस्था है उनको जो है का क्रम रहते हैं, अपन कौन से समय पे कौन कौन सी चीजें उनके लाने खिलाओ?
3: उनके लिए बनोला की पीना, मीठी पीना, बाजरा ये मिला के शाम को दलिया बना के देना पड़ता है।
0: तो उन्हें सवेरे के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम
3: देना पड़ता है, दोपहर में तो चारा डालते हैं यार और भूस मिला के,
0: और उनके लाने समय समय पे जैसे और भी दूध बढ़ावे के लाने का छू
3: के लिए तेल गुड़ मेथी ये सब डालनी पड़ती है उसमें।
0: जैसे अपन बात कर रहे हैं दूध के उत्पादन की, तो अपने लाने इनसे पशुओं से कितने दूध का उत्पादन अपने लाने मिल जाए?
3: लिए सब जितना मर्जी आज हमारे पास गई है वो 10 लीटर दूध दे रही है, वो जितना अपन डालेंगे उतना ही देगी, अगर अपन चारा नहीं डालेंगे पीना नहीं डालेंगे तो कैसे देगी वो?
0: तो जो अपने पास दूध की पैदावार होते हैं उसको अपन उपयोग का करते हैं?
3: अपन उपयोग करते हैं जितना अपने घर जरूरत होती है, बाकी दे देते हैं दूध वालों को, बच्चों का खर्चा चलता है उससे।
0: और जैसे अपन पशु पाल रहे हैं तो जैसे इनको गोबर है, भावी बिलात निगरत है, इनको अपशिष्ट निगरत है, तो उनको अपन का उपयोग करते हैं?
3: खेतों में डालते हैं, ग्वार बन जाती है उसकी।
0: जैसे अपन ग्वार बन गई तो वहाँ खेतन में डालने से का फायदा होता है?
3: दूसरी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकारी खाद आती है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ती।
0: तो जैसे सरकारी खाद को से पैदावार ले रहे हैं और अपन गोबर की खाद जैसे डाल के पैदावार ले रहे हैं, दोनों में से कौन सी खेती
3: है? ये अच्छी है देसी खाद जो है ना, गोबर की खाद है, इसको ना तो अपने को गेहूं में डालेंगे, गेहूं वाले खेत में तो बीमारी भी बचेगी, और जो तुरंत अपन दवाई डालेंगे तो अपने शरीर में आना पूरी।
0: और पैदावार की अगर बात करें अपन तो
3: पैदावार इससे ज्यादा होती है गोबर वाली खाद से।
0: तो कहने का मतलब जो है कि जो भैया खेती कर रहे हैं खेती के संग उनके लाना पशुपालन चाहिए
3: जरूरी है।
0: तो आपने जो है भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, इके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो किसान भैया देखो जो मिले अपन पशुपालक भैया से, और किसान भैया अमतला गांव से हो रही है भाई चलवे की बेरा, तो सगे किसान भैया से कहते हैं राम राम।
4: राम राम।
0: किसान भैया अपन सुन रहे थे किसान वाणी गाँव में किसान के साथ क्रम के अंतर्गत ग्राम अमतला विकासखंड पौरी जिला शिवपुरी के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम ये के प्रस्तुत करते आते भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। और ये देखो अपाई किसान भैया के लाने अपाई किसान भैया भी ये कह रहे कि अपने जो है खेती तो करनी ही है, लेकिन अच्छी खेती करने हैं तो बाकी लाने चाहिए अपने गोबर को खाद।
5: और कभी
0: अब गोबर को खाद चाहिए तो फिर अपने पालने पड़ेंगे पशु
5: और का,
0: है ना, बिना पशुअन के फिर अपने गोबर की खाद कैसे मिलेगी?
5: कैसे, सही बात।
0: तो अपने लाने पशु अगर अपन पालेंगे तो अपने लाने पशुअन की खाद भी मिलेगी, और पशु पाल भी के तो
5: बहुत फायदा है,
0: बेहद फायदा है। अपन लाने देखो दूध मिले, घी मिले, दही मिले है,
5: और
0: अपने ज्यादा हो तो अपन बेच के नगद आमदनी भी अपने प्राप्त हो जाए, उसके बाद फिर अपने गोबर की खाद भी मिले
5: और का,
0: है ना, ईंधन के रूप में अपने लाने कुकंडा भी मिल जाते हैं।
5: और तो
0: अपने किसान भैया के लाने जो है पशु जरूर पालना चाहिए, और इस समय अपन देख रहे हैं कि विलायत किसान भैया ने पशु पाले भी हैं, लेकिन आप जैस समय अपन देख रहे हैं गर्मी विलायत पड़ रही
5: और का भैया
0: और पशुअन की अपने लाने जो है गर्मी के मौसम में ही अपने लाने विलायत देखभाल की जरूरत होती है, सर्दियन में तो नहीं होती, लेकिन गर्मियन में अपने पशुअन के लिए अपने विलायत देखभाल करना चाहिए। तो हम

0: वजह है कि देखो जौन भैया ने जो है पशु पाल रखे हैं, वे भैया सबसे पहली बात तो जो है कि ऐसे गर्मी के मौसम में अपने पशुअन के लाने बहुत ही बचाव करने हैं। सबसे पहली बात यह है घाम में पशुअन के लाने ना बांधे,
1: और कभी
0: उन्हें तो हमने देखो बिलाते अपने किसान भैया हैं गांवन में, वे तो रह रहे अपने घरन में और पशु उनके बांधे पेड़ के नीचे।
1: सही कह रहे हैं,
0: पेड़ के नीचे से बताओ लू चलेगी तो पशु के लाने नुकसान तो करेगी,
1: करेगी। सही कह रहे हैं,
0: तो अपने चाहिए कि उनके लाने बढ़िया अपन देखो पक्को नहीं बना पा रहे, टीन सेट को नहीं बना पा रहे तो कम से कम अपन छापरो तो बना सकते हैं।
1: सही कह रहे भैया,
0: छापरो बढ़िया बना के चारों तरफ से बंद कर दें, लेकिन बाकी हवा की व्यवस्था पे लाने वहां में
1: रखना
0: चाहिए ना। और दूसरी बात नीचे से जो है पक्को होना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि जैसे पक्को नहीं कि वह पशु फिसल जाए,
1: फिसल जाए में रहे रहे
0: तो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा सूख तो रहे और पशु का पहलाना जो है
1: सूखो
0: बनो रहे ना, तो जो बात को ध्यान रखना। और दूसरी चीज जो है पशुओं ने गर्मियन में विशेष तौर से खावे के लाने एक बार कमी कर दो, लेकिन पानी की जो समय में
1: बिल्कुल कमी नहीं,
0: ना तो मनुष्य कमी करना चाहिए पानी पीवे में ना पशु।
1: सही कह रहे भैया,
0: और पशुओं के लाने ऐसा नहीं कि गर्म पानी धरो पीवे धरे आए, नहीं
1: सही कह रहे,
0: उनके लाने भी अपन ताजो और ठंडो पानी पिवाए है ना,
1: और
0: धरो हुआ पानी ना पिवाए। जिस तरह से चारे में भी अपने देखने हैं कि अपने जो है ताजो चारो होना चाहिए, वहाँ बरसीम खर पीना जिस सब अपन अगर पशुअन के लाने पवाएंगे तो बात से कहा है कि पशुअन को दूध बढ़ेगा, वो अपने लाना फायदा रहेगा। और दूसरी बात जा है कि अपने पशु जो उन पले हैं इनको एक टीकाकरण होते होते जैसे बरसात के पहले
1: और
0: तो बरसात के पहले मतलब गर्मी चल रही है
1: और
0: तो जैसा समय पशुअन में जैसे मुंह पका है खुर पका है एक टंगिया है इनके जो है टीकाकरण होते हैं, तो टीकाकरण अपन जब पशुअन को इस समय में अपन
1: करा
0: सकते हैं, है ना।
1: और कभी
0: जो अपने लाने विशेष ध्यान रखने, अगर अपन ने जिस सब बातन को ध्यान नहीं रखो तो वह पहले लाने दूध टूट देंगे,
1: सही कह रहे हैं,
0: दूध को उत्पादन कम मिले वो तो बस ही अपने लाने बिलात नुकसान होगा, और पशु बीमार पड़ेगा धुबा के लाने तो पहलाने बिलात परेशानी है।
1: और कभी
0: तो अपने लाने चाहिए कि अपन जो है पशुओं की देखभाल अच्छे से अपने जैसे भाई मुड़ा मुड़ियन की करत ना
1: ऐसे ही करने
0: है। और यही हम मुड़ा मुड़ियन के लाने भी कुछ कह रहे, अब भाई खुद के लाने भी कह रहे, अपन घर से बाहर जाए गमछा बांध के जाए तौलिया बांध है ना, पानी पी के निकले घर से खाली पेट ना निकले,
1: पेट भर खाना
0: खेत पे काम पे जा रहे हैं तो कलीव करके निकले, फिर खाना संगे लेके जाए
1: और कभी
0: है ना, और छाए में बैठे हैं मतलब ये सुनाई है घाम में अगर काम करेंगे अपने भी लू लगा
1: सकते
0: तो अपन बीमार तो पशु बीमार तो खेती फिर कैसे होगी
1: जब बताओ,
0: तो अपने अपाओ सबन को जो है ध्यान
1: रखना।
0: एकदम अपन जैसे कूलर की हवा में पंखा की हवा में घर में एकदम बाहर है अपन गए तो बस ही अपने लूट लग सकते
1: और कभी एकदम तो, से ना निकलें
0: तो आप एकदम से नहीं निकलने हैं, तो अपने किसान भैया के लान चाहिए सब बात को किसान भैया को ध्यान रखने है ना।
1: और
0: तो अपन भैया के लान बता देते हैं, देखो अपने सीपरी जिले के कल के मौसम की जानकारी, कल अपाओ जो है दिन को तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 42 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रहेगी 24%, हवा की गति रहेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसान भैया रो आओ भाई हो जा रही है किसान मानी से चल भी मेरा। तो भाई मंगरू भैया
1: और मनीषा बहन को दो विदा, राम
0: राम जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद टीना।
0: दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर एआई आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड की भूमिका और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अहम बात कही।
2: We've just concluded very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities.
0: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है। हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से।
1: देखिए, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश जो चार देश हैं ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है। तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता। ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय।
0: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
1: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं। चारों जो देश हैं, भारत, अमेरिका,

0: जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है। तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं, उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
1: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
0: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है, जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है और जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर। तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका की एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन US डॉलर्स को मोबिलाइज करें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रेजिलिएंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा ये, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आप की ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक अल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि ये अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए एसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस है कि जो कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश में है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक अल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है कि हम कि क्वाड जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए, मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में। और जब हम एआई एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कैसे एआई को, इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रेजिलिएंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में एआई एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, और एआई और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साध सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों ने पेश।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे एक क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होंगी और जियो पोलिटिकल रियलिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मों से ली गई कुछ खूबसूरत गजलें। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म से ली गई एक गजल, जिसे आवाज दी है भूपेंद्र ने, शायर हैं बशर नवाज और तर्ज बनाई है खयाम ने।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म से ली गई खूबसूरत गज़ल। कलाम है शहरयार का और धुन बनाई है खयाम ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगली गजल है इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी की। संगीत है चर्ची सिंह का, आवाज चित्रा सिंह की और फिल्म का नाम है अर्थ।

जगजीत सिंह की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म से ली गई बहुत ही प्यारी सी गज़ल, जिसे लिखा है निदा फाजली ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं सरफरोश फिल्म की ये गज़ल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ममता फिल्म से ली गई खूबसूरत गजल लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह के बोल हैं और संगीत रोशन का।

साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में, इंतजार कीजिए।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नहीं पुरानी. Best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री

0: पाकिस्तानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि

0: उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akash Rani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपए फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है, जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मंसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ फौज इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुशतरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक आज़ादी सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर खुराक और अवामी निजाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग म्यारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का इहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी हुक्काम जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और ये दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
4: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک کے حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرگستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2rd راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیر شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
5: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے، لیجیے پیش ہے اردو پروگرام کہکشاں۔

ये तो उन जज्बों की ताबिंदगी है जो एक इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बजाते खुद एक सफर है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल मिट्टी का कोई शहर नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब होती है। आज का हमारा ये प्रोग्राम महज आवाजों का संगम नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी बज्म है जहां हम उस मुबारक सफर की कैफियत का जिक्र करेंगे जो सब्र की भट्टी से गुजरकर यकीन कामिल की रोशनी तक पहुंचता है। ये तस्किरा है उस तड़प का जो एक मोमिन को हरम की गलियों तक ले जाती है जहां हर कदम पर सब्र का इम्तिहान है और हर सांस में यकीन की खुशबू जो रूह की गहराइयों से शुरू होकर अल्लाह की रजा के उफुक तक जाता है। ये सफर हज हो या इश्क इलाही की कोई और पगडंडी, इसके लिए हमें दो ही चिराग दरकार होते हैं, एक सब्र की ढाल और दूसरा यकीन का चिराग। सब्र जो हमें पुरखार रास्तों में टूटने नहीं देता और यकीन जो अंधेरी राहों में नवीद मंजिल बनकर चमकता है। अल्लामा इकबाल ने इसी रूहानी बेदारी और बुलंद परवाजी को क्या खूब पेराए इजहार दिया है। नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। समीन, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश गुलुकारा रजिया बानो की आवाज में, कलाम है ताबिश कानपुरी का, समाप्त कीजिए।

0: ना तमझे तो हंसेगी दुनिया, तुम हो दीवाने तो दीवाना कहेगी दुनिया।
1: दोस्तों अभी आप रजिया बानो की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था ताबिश कानपुरी का। हम बात कर रहे थे रूहानी सफर और सब्र के बारे में। रूहानी मसाफात का अवलीन जीना खुलूस नियत है और

अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली क़ुव्वत सब्र है। रूहानियत का मफहूम तर्के दुनिया नहीं, बल्कि हुजूमे दुनिया में रहते हुए खालिक़े हकीकी से लो लगाए रखना है। इस ताल्लुक की बुनियाद सब्र पर खड़ी है। जिंदगी में जब हालात हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, तो वही लम्हा हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। सब्र दरअसल वो खामोश तवानाई है जो इंसान की शख्सियत को घेरने से बचाती है। ये हमें सिखाता है कि हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह मुकद्दर है। जब हम दामने सब्र थामते हैं, तो गोया हम खालिखे कायनात की हिकमत पर इस यकीन का इजहार करते हैं कि तेरी रजा मेरी तमन्ना से फायक है। जब तक कल्ब में सब्र की कंदील रोशन न हो, रास्ते की धूल मंजिल का गुबार बन जाती है। इस शेर में कैफियत सब्र को किस महारत से बयान किया है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। समिन, हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश के जानिब रुख करते हैं, जहां हम सुनेंगे महमूद निजामी और साथी की आवाज में ये कव्वाली। समाप्त कीजिए।

मुख्तलिफ रंग में सारी दुनिया से है सिलसिला आपका सारी और मेरे

दोस्तों भी आप महमूद निजामी और साथी की आवाज में कव्वाली समाज फरमा रहे थे। हम बात कर रहे थे सब्र की। सब्र के कठिन रास्ते पर जब इंसान थकने लगता है तो उसे जिस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है यकीन, जो इस कहकशां का सबसे रोशन सितारा है। यकीन वो ताकत है जो तपते हुए सहराओं में भी ठंडक का एहसास दिलाती है। जब बंदा मोमिन लब्बैक की सदा बुलंद करता है तो उसे कामिल भरोसा होता है कि उसकी पुकार अर्शे मौला तक रसाई पा चुकी है। ये यकीन ही है जो उसे हुजूम में तन्हा नहीं होने देता और तन्हाई में अल्लाह के करीब कर देता है। यकीन वो नूर है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। जब हम मकाम इब्राहिम पर खड़े होते हैं या सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं तो दरअसल हम उस यकीन की तारीख को दोहरा रहे होते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम का शेवा था। रूहानी सफर हमें दर्स देता है कि अगर यकीन कामिल मयसर हो तो बे आबो गया वादियों से भी चश्माए जमजम फूट सकता है। जब इंसान यकीन की मेराज पर होता है तो नामुमकिनात भी मुमकिन होने लगती हैं। यकीन हमें तूफानों में साहिल की उम्मीद और मौजों में साबित कदमी अता करता है। रूहानी सफर का मुसाफिर तभी बामुराद होता है जब उसका यकीन संगे गिरा की तरह मजबूत हो। अल्लामा इकबाल ने इस यकीन को हयात इंसान की शमशीर करार दिया है। यकीन महकम अमल पाहम मोहब्बत फातेह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। सामीन इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में और कलाम है हनीफ भोपाली का। समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था हनीफ भोपाली का। दोस्तों किस कदर दिलकश है वो लम्हा जब सब्र और यकीन हम आगोश होकर इंसानी तकदीर बदल देते हैं। ये रूहानी सफर दरअसल अपनी जात की बाजियाबी का नाम है। जब हम कायनात के रंगों में सनाए के रंग तलाश करने लगते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि दुनिया की हर शय फानी है, सिर्फ अल्लाह का इश्क और उसका कुर्ब ही दायमी है। जिंदगी के शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना और इस पर यकीन रखना ही वो असल कामयाबी है जिसे पाने के लिए सूफिया इकराम ने अपनी उम्रें गुजार दी। जब दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो तो बेसाख्ता जबान पर ये शेर आ जाते हैं। निगाह शौक को वो कैफो सुरूर मिल गया, मेरे सब्र को आज तेरा नूर मिल गया। समीन इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार जानी बाबू की आवाज में और कलाम है पयाम सईदी का, समाप्त कीजिए।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम। विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और मृगेंद्र सिंह, वार्ताकार अभिषेक कटियार और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। किसी भी लोकतांत्रिक देश की यात्रा में 12 साल का समय एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पीछे मुड़कर नीतियों के परिणामों को और आगे देखकर भविष्य के पदचिन्हों को साफ साफ रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव, कड़े और ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक सुधारों की नई बयार और वैश्विक पटल पर भारत की एक नई धमक को देखा है। इस यात्रा के कई आयाम हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा जी। सर, आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: जी, बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो आइए बिना किसी देरी के सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे है, UPI आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इस

0: से आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
1: देखिए, निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेष अपन बात कर रहे हैं कल यूपीआई आप देखें गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है या और कोई ख़रीदारी करनी। इवन आप छोटे, जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं, उनके पास भी यूपीआई रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ, और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी, जनधन, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है, क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की जिंदगी सच में बेहतर की है?
2: देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो वो 15 पैसे मिलता है, लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की योजना थी और गरीब व्यक्ति को व्यवस्था के साथ जोड़ करके और जो सुविधाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की वो देने की एक बड़ी योजना जनधन खातों के रूप में हुई जी। और ये कह सकते हैं कि 55 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, जिसका आज हम देख रहे हैं कि किसी भी योजना का सीधा खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, उस आधार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना इतनी लाभकारी हुई है कि उन्हें इमीडिएट लाभ देना होता है तो उसके माध्यम से सरकार पहले ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। और आयुष्मान योजना ने तो जो बीमार और गरीब, तो जो गरीब बीमारी के नाम पर अपने घर बार को बेच करके, जमीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा दे करके ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि वो सामान्यतया लोगों के बीच में खड़े होने जैसी स्थिति में है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है ये जो जमीन बेचकर इलाज कराने वाली प्रथा थी वो लगभग खत्म हो गई थी। इसी प्रकार से जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। और जो हम जंगल कटते हुए सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा करते थे और लाने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से जो लाभ मिला है उसने महिलाओं के जीवन स्तर को बदला, बीमारी से उनको मुक्ति मिली, आंखों से धुआं का जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो न केवल ज़मीन पर उतर रही हैं बल्कि भारत के नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिल रहा है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक कानून को लाना, इन्हें देश की एकता और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है और देश की एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में काफ़ी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, ज़मीन पर इनका असर आपको किस प्रकार से दिखता है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा 370 को हटाना एक इतिहास की धारा को जोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, क्योंकि ये निर्णय करने की हिम्मत किसी में नहीं थी
0: जी।
1: इससे जम्मू कश्मीर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखंडता का ताना बाना मजबूत हुआ है
0: जी।
1: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके तहत आप देखिए जम्मू कश्मीर कभी आप जाते थे तो कहीं यहाँ घटनाएं हो रही, लेकिन जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति थी धारा 370 के बाद वो पूरी तरह से लागू हुई और आतंकवाद अब आप कहीं सुनने को नहीं मिलता
0: जी।
1: ये जो हुआ है निश्चित रूप से ऐतिहासिक, इसीलिए देखिए आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद विकास की ओर दौड़ लगा रहा है और देश की मूल धारा में जुड़ गया है। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वो नहीं रहा है
0: जी।
1: इसी तरह आप 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको घर से हटा

0: दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो तीन तलाक है, निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नए नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हो रही। नहीं तो कोई भी आप बताइए, तीन बार तलाक तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से। उनको ये नहीं देखते थे कि उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती है या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है, तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था। ऐसा तो लगता था जैसे अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है। लेकिन तीन तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए, वो कहती हैं तीन तलाक ने हमें नई जिंदगी दी है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहाँ हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है। अगर हम CAA की बात करें, पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को, इस कानून की भावना और उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, CAA कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था
1: जी।
2: और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का, वो निरंतर घटा है, इसी से ये लगा कि वहाँ प्रताड़ना होगी। तो उस समय आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में CAA कानून लाकर जो तीन देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू, ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है CAA का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरसता के लिए, और भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, इसलिए इन समुदाय, इस धर्म को मानने वाले समुदायों के साथ कहीं भी प्रताड़ना होगी तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे। और भारत में ऐसे कानून बना करके, हालांकि इस कानून में केवल तीन देशों का उल्लेख है, लेकिन अन्य देशों के जो सनातन मानने वाले या हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ रास्ता खुला है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के कानून जो हैं वो सामाजिक समरसता के लिए, और अन्य राष्ट्रों में प्रताड़ित हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों को, आप भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना जैसी बातें सामने नहीं आ रही
1: जी।
2: अतिरेक में जरूर कहते हुए सब हमें सुन जाएंगे, लेकिन उनको स्वतंत्रता है और उन्हें सारे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे देश में सब प्रकार के मानवाधिकार उपयोग करने के लिए अल्पसंख्यकों को छूट है। तो इसलिए इस CAA का बहुत महत्व था, और मोदी सरकार ने जो, जिसको कह सकते हैं ना कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जाकर के निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम हैं, वो कानून हैं, तीन तलाक जैसे कह सकते हैं, CAA कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का। तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है, सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है, और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी

0: थे, सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। मृगेन जी, आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं?
2: देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था
1: जी।
2: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को स्थायी रूप से 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1,00,000 रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएँ चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बना के। और इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है। आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ न कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगे, तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SSG से जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से लेकर 20,000 रुपये महीने तक कमा रही, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया है, इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अभी तो सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश के कूनो को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है, वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है। और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो ला करके छोड़े गए हैं, इनसे भी हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ में जो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो जो हाइड्रोजन मिशन बनाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, या सोलर रूफ टॉप जो मामला है जिसके तहत PM सूर्य गृह योजना जो है, घर योजना है, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार और बेहतर हम पर्यावरण को बना सकते हैं, क्योंकि जब आज हम देख रहे हैं तो जो ये भीषण गर्मी है ये पर्यावरण असंतुलन के कारण सबसे ज़्यादा है, और वृक्षों का कम हो जाना, मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ घने जंगलों की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी चूंकि गर्मी है तो ये समझने की चीज़ है कि जिस तरीके से अब चीता प्रोजेक्ट आया है या अन्य पशु और पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए, फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, वृक्षों को नमी मिलती रहे, इसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, तो ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए आने वाले समय के लिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबा इसका वो रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि किसी एक विषय को चुनते हैं तब भी, और यदि समग्र विषयों को देखते हैं तब भी, सभी क्षेत्रों में काम करती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा चीता प्रोजेक्ट जिसका आपने उल्लेख किया, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर सरकार व्यक्तिगत रूप से क्या सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सोचा गया। इसका अभिप्राय ये है कि समग्र दृष्टिकोण से

0: कैसे भारत के अंदर विकास हो सके, जिसे समग्र विकास कहा जा सकता है, वो सारी चीजें इस समय दिखाई दे रही हैं।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। और उसी समग्र दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। वैश्विक छवि की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में, वो एक अलग ही रूप में अब दिखाई पड़ती है। मृगेन जी, आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफ़ी बढ़ी है, तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है?
2: देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वो अब पूरी दुनिया मान चुकी है। ये अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो अब G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि विश्व का कोई भी देश हमें आँख नहीं दिखा सकता, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है, या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा, बात कर रहे हैं वैक्सीन की बात हो रही, अब कोरोना की वैक्सीन, सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। मतलब जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए वर्षों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति हो रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। 6 महीने के अंदर ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था, जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश से जहाँ फैला हुआ था उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छवि बनी है, निश्चित रूप से इस छवि के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है। अब मदद के लिए भारत कभी किसी के सिक्के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया। और देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने है।
1: आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं, रोजगार और विनिर्माण के मामले में जमीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नजर आता है, सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का। और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ जी। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है, उस टेक्नोलॉजी को आप तेजी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूँ कि RR कैट इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो, आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं। और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है
1: जी।
0: इसका

0: सीधे अभिप्राय यह है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा, और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है। मृगेन जी आपसे है, नोटबंदी और जीएसटी के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है।
2: 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू। उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, इससे जो काला धन था
1: जी
2: वो देश में समाप्त हो गया था। क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर दो के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500-500 करोड़, 200-200 करोड़, 100-100 करोड़ हैं रखे, किसी के गद्दे के नीचे हैं, किसी तक की तकिया के नीचे पड़े हुए हैं। बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, और इससे भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा था। चीज और भी हुआ था, महंगाई विशेषकर जो नंबर दो के पैसे लोग लगाते थे जमीन वगैरह के लिए, उसमें महंगाई भी काफ़ी कम हुई थी, ज़मीनों के रेट काफ़ी गिरे थे। उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जब पैसों का ये था कि नकदीकरण वो बहुत कम हुआ है, और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके डिजिटाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और देखिए उसके बाद जो आर्थिक सुधार, जीएसटी निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा एनडीए से अलग दल थे, सबने विरोध किया। लेकिन अंत में जब उसके फायदा देखा लोगों ने, उसको माना, और उससे जो जीएसटी से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ उससे बढ़ा भी, जो टैक्स बढ़ा चोरी कम हुई, और साथ ही जब चोरी कम होगी देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा, जनता की लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होंगी हमारी, और जो आप करें अधोसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधा, ये सब इसी के लिए। तो जीएसटी ने एक बड़ा ऐसी चीज़ किया जिससे, अच्छा दूसरा इससे फ़ायदा ये है आप कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स है, कहीं 7% है, कहीं 15% है, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही एक देश एक टैक्स का, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। और पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद से सब आपको एक रेट पर मिलेगा, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है देश के लिए, और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 जून की रोटी नहीं मिली है, और ये सब आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी बात हुई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेश दूसरे देशों के लोग, जो पड़ोसी देश हैं, वहां के लोग भी हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं, एक सस्ता और बहुत ही सुलभ इलाज यहाँ पर मिलता है। सुरेश जी, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से 3रे स्थान की तरफ बढ़ रहा है, इस आर्थिक यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज़्यादा होता है, समर्थन कम होता है। भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी, और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया, और आर्थिक सुधारों के साथ और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है, जी। आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशंस को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से। और फिर आप जो है जो ये आजकल एक्सप्रेसवे बने हैं इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो, फिर आप हमारे जो उत्पादन है उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है
1: जी।
0: तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है। और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था पाँचवें नंबर पर है, लेकिन गरीबी की रेखा के का प्रतिशत आपके पांचवी अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता, इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से बाहर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक जिले में एक प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है। क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं, जब टैरिफ का वार आया भारत नहीं हिला, जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई, तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आपने विकसित भारत 2047 की बात की, अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी, आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम, विषय था NDA सरकार के 12 साल। विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और मृगेंद्र सिंह, वार्ताकार अभिषेक कटियार और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उमाकांत और रमाकांत कुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन। राग है यमन। तबले पर संगत की है, माफ कीजिएगा, पखावज पर है अखिलेश गुंदेचा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित उमाकांत पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन, राग था यमन। पखावज पर संगत कर रहे थे अखिलेश गुंदेचा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4-8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Kiran Jha. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as the members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए

होने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।